0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: going ahead to Karnaprayag, and in wake of that alert, police is checking each and every vehicle and diverting the routes towards the city. And let us tell you that all border posts are sealed at the moment, and police is thoroughly checking and not letting any kind of Nihang vehicle pass through this barricading. Let us tell you that this is an almost the border of Dehradun city, and right now you can see behind me the police sleuths are checking at the moment and diverting the traffic towards alternative routes in order to ensure that the community and the rally do not go towards Rishikesh and higher areas. This is Ankit Sharma for India Today, Dehradun.
1: On that very note, viewers, we're now taking you to another story from the neighboring state of Punjab. This is the alleged sacrilege row involving Punjab Chief Minister Bhagwan Mann, and this episode is escalating only rapidly, with fresh claims and counterclaims adding new twists to the controversy. Hours after the Punjab Chief Minister released a video which alleged that a Canada-based individual had used hyper-realistic face masks to resemble him, the man at the center of the controversy has hit back. Jagman Samra, who had shared the very viral sacrilege video, has rejected Mann's allegations outrightly. Samra claims he neither purchased nor was paid to use the masks referred to by the chief minister, and has even come out to challenge Mann to produce evidence to back his very assertions now. Meanwhile, it is India Today who has conducted a ground report and an investigation into one of the facilities linked to the forensic report that was cited in Bhagwan Mann's defense. Now, our team visited that address associated with the alleged forensic examination in Delhi's Janakpuri and found that there is no forensic laboratory operating at that very site. There was no visible forensic infrastructure or evidence of any forensic analysis being conducted there. Staff present at the location also stated that no report connected to Bhagwan Mann controversy had been prepared from the very premises. So this is where the entire episode stands at this given point. Take a look at some of the reactions.
2: इस पूरे मामले में जिस साइबर लैब का नाम सामने आया, उस साइबर लैब में हम मौजूद हैं, यानी साइबर यान, ये तिलक नगर में है। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ये पता लगा कि अरुण और अंकित, जिन दो आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, उनका साइबर यान से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ हमने उनकी फोटो भी दिखाई, क्योंकि जो गिरफ्तार दोनों लोग हैं, जब दोनों आरोपी हैं, ये अंकित है, इसे पुलिस ने पकड़ा। ये कभी देखा?
3: नो सर।
2: ये कभी काम किया है यहाँ?
3: नो सर।
2: ठीक है, अब ये देखिए अरुण है, अरुण कभी आया है?
3: इनको भी नहीं देखा सर, कभी
2: कभी नहीं देखा
3: जी।
2: तो ये लोग इन्हें कभी पहचानते नहीं, कभी देखे नहीं? गुड़गांव पुलिस आई थी?
3: नो सर।
2: गुड़गांव पुलिस भी नहीं आई थी? कहीं की कोई पुलिस
3: नहीं? नहीं, यहाँ अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन,
2: कोई जांच के लिए कोई?
3: नो नो
2: नो। अच्छा, यहाँ जो ये आपका पूरा सेंटर है, यहाँ पर कोई लैब है जिसमें फॉरेंसिक तरीके से आप जांच कर सकें कि सीडी नकली है असली है?
3: ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर।
2: तो करते क्या है आप लोग?
3: सर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी कोर्स से रिलेटेड।
2: साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग कराते हैं? कोई लैब?
3: नो नो नो सर।
2: बच्चे कितने बड़े होते हैं जिनको ट्रेनिंग देते हैं?
3: 10th pass 12th pass बीए बीटेक।
2: मतलब कोई भी?
3: हाँ, कोई भी।
2: एक बार दिखाएंगे आप, क्या नाम है आपका?
3: नितिन सर।
2: नितिन, आप यहाँ पे क्या करते हैं?
3: सर, मैं ऑफिस में हूँ।
2: अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि साइबर यान में दरअसल यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ बच्चे ही बैठे हैं जो स्टूडेंट हैं, कोई लैब जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, और बहुत बड़ा लग नहीं रहा है। ये भी छोटा सा एक लैब है, अंदर जाने की जरूरत नहीं, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। वो कुछ बच्चे हैं, हम देखते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये भी लैब उसी तरीके से ही है, मतलब क्लासरूम है यहाँ पर, बेसिकली ये पूरा क्लासरूम है। और अगर इधर हम आगे की तरफ जाते हैं तो बस ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं। तो कुल ये सिर्फ इतने ही एरिए में है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे?
3: स्टाफ में है 13-14%,
2: 13-14 लोग ही काम करते हैं, जिसमें क्लासरूम्स हैं, लैब आप उनको कहिए, लेकिन कोई फॉरेंसिक लैब या सीडी को प्रमाणित करना कि ये सीडी सही है गलत है, ये यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पुलिस नहीं आई, और अरुण और अंकित यहाँ पर काम नहीं करते थे, ऐसा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है।
4: कल परसों दी इन्होंने नवा एक सप्प कढ़िया मास्क वाला,

0: Along that note, we're breaking news right at the top. This is from Ujjain. What we are learning about is a certain Moharram procession that was underway yesterday evening. And in that very procession, what could be seen was a mock car blast, which has now sparked a major controversy. Now the probe is underway to, in fact, understand what went down for a car to be blasted off in the manner that it was done at this very procession. This mock attack staged during the Moharram procession that we bring to you visuals of on our screens. A van that was suspended from a crane at a height and then blown up in Ujjain. Why? Well, that's still something that needs to be, in fact, investigated into. Has raised several questions at this given point with regards to what exactly went down here. Ujjain's Barnagar is where this particular incident took place. Le Fir Aage. Here we are again. Written on the vehicle is what could be seen before it blasted off. The video, in fact, surfaced and now it's going around to be viral. But the police is also registering an FIR at the same time against this entire case. The video showing the van being blown up during the Moharram procession in Barnagar near Ujjain has now gotten viral. The incident occurred during the Moharram procession passing through the Adan neighborhood of Barnagar. During this very procession, this particular van that you're looking at on our screens was suspended from a crane at a height of approximately 40 feet. Two youths stood on the van waving red flags before it was completely blown up into pieces. The words Le Fir Aage were written on the windshield in the van that was destroyed. Following the emergence of this very video now, it's Ujjain additional SP Karandeep Singh, who stated that a case is being registered against the four individuals. Organizer Shoaib Khan, flag wavers Talim Khan and Zahid Khan, and the crane owner Gopal Mali under several sections of the BNS. So this is what we are learning at this given point. On that note, Ravish Pal Singh joins me on the broadcast with more details. Ravish, a very good morning to you. Ye jo hadsa hua hai, ek procession chal rahi thi Moharram ke occasion ke liye. पर ये जो गाड़ी ब्लास्ट किया गया है इस पूरे प्रोसेशन में, इसको लेकर काफी सवाल पूछा जा रहा है. अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है. पहली बात तो क्यों ऐसा एक मॉक ब्लास्ट करना ही क्यों है ऐसे एक रिलीजियस सेलिब्रेशन में? और दूसरी बात, जो लोग इन्वॉल्व थे, चार लोगों के अगेंस्ट अभी एफआईआर दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है. उनके अगेंस्ट बहुत सारे सेक्शंस में चार्जेस दिए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए.
1: देखिए, बिल्कुल, ये जो घटना है ये उज्जैन का जो बड़नगर इलाका है वहाँ की घटना है. मुहर्रम का ये प्रोसेशन था जो 23 की रात को निकल रहा था और बताया जा रहा है कि उसी में ये घटना सामने आई थी जिसका वीडियो कल वायरल हुआ. जो अक्यूज है उनका कहना है कि इस तरीके के स्टंट वो प्रोसेशन में पहले भी करते आए हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने ये एक नया आइडिया सोचा था कि जिसमें इन्होंने एक क्रेन के ऊपर वैन को लटकाया फिर उसमें ब्लास्ट किया था. और यहीं पे इस क्रेन जो ब्लास्ट जिस कार में किया गया उस पर लिखा था वी आर बैक अगेन. इसे लेकर के ही लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि मुहर्रम के प्रोसेशन में, रिलीज प्रोसेशन में आखिर इस ब्लास्ट का क्या काम था. जो अक्यूज है उन्होंने पुलिस को बताया है कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोसेशन को देखें और एक तरीके से एक कंपटीशन के रूप में वो इसको देख रहे थे. लेकिन इस कंपटीशन के चक्कर में उन्होंने जो हरकत वहां पे की, जो स्टंट किया, उसने लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया. क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोसेशन में ब्लास्ट हुआ है, जो हिंदू आउटफिट थे उन्होंने इसे एक तरीके से टेरर प्रिपरेशन के तौर पर सामने रखा और पुलिस ने इस पर FIR लॉन्च किया है. पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट की वजह से जो वैन थी उसके पीसेस और जो मेटल पीसेस थे, साथ ही में जो ग्लास के पीसेस थे, वो वहां पे बहुत दूर तक फैले और इसकी वजह से नीचे जो लोग मौजूद थे, क्योंकि मुहर्रम का प्रोसेशन था, काफी भीड़ वहां थी, इसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता था. और इसीलिए पुलिस ने फिर BNS की कई सेक्शंस में जो तीन मेजर अक्यूज हैं जो गाड़ी वैन के ऊपर खड़े होकर के फ्लैग होस्ट कर रहे थे और साथ ही में जो मेन स्टंट करने वाला लड़का था शोएब, इन तीनों के साथ साथ जो क्रेन का ओनर है गोपाल, उसके खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज की है और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि पुलिस एक्शन जो है इन सभी लोगों के लिया जाए. लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि जो हिंदू आउटफिट्स हैं उन्होंने इसे बेहद ज्यादा गंभीर बताया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि एक तरीके से ये कट्टरपंथी सोच है जिसको डिस्प्ले किया गया है एक रिलीजियस प्रोसेशन की आड़ में. और आपको ये भी बता दें कि ये जो एरिया है उज्जैन के पास का बड़नगर, ये पहले भी विवादों में रह चुका है। इस तरीके के प्रोसेशन के दौरान जो स्टंट्स होते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटीज होती है, तो उज्जैन के पास का जो एरिया है, उज्जैन के आसपास बड़नगर है, नागता है, खाचरोद है, ये वो जगह है जो कि इस तरीके के एक्टिविटीज को लेकर पहले भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रह चुकी है। और इसलिए पुलिस जो है इसे सिर्फ एक स्टंट के तौर पर नहीं बल्कि एक सीरियस कॉन्स्पिरेसी के तौर पर लेते हुए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
0: जी रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज वेयर वी लीविंग इट एट, बट इट इज डेफिनेटली अ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दैट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेशन वेयर दिस मॉक ब्लास्ट वाज सीन एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस एंड द मोहर्रम प्रोसेशन इन उज्जैन।

0: मुझे मेरे मन में, क्योंकि मैं आसाम से हूं, व्यक्तिगत मेरी वो आशंका है।
1: पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका? और पासपोर्ट क्या 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन है और उसमें बहुत बड़ा पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही तो दिया जाता है भाई। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट प्रूफ नहीं है, आधार प्रूफ नहीं है, फिर क्या प्रूफ होगा बताइए? तो अब जाहिर है अब 2030 तक जिसके पास जिस किसी के खुशकिस्मत के पास बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड होगा उसी को मानेंगे।
2: द बीजेपी हैज हिट बैक अक्यूजिंग द ऑपोजिशन ऑफ ट्विस्टिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल पोजिशन फॉर पॉलिटिकल माइलेज। द पार्टी सेज नो न्यू पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड एंड मॉक द ऑपोजिशन एज द कागज नहीं दिखाएंगे ब्रिगेड। What began as a legal clarification has once again opened a political battle over one of the most fundamental questions in a democracy. What finally proves that you are an Indian citizen? With Shivani Sharma, Bureau Report, India Today.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
4: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
6: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: Breaking news right at the top of the bulletin. We are tracking the Lohagarh case here. An accused Sia's mother has spoken to us on India Today. She says, punish daughter. Mother says, if Sia is guilty indeed, give her the harshest of punishment. Says, throw Sia from the same spot where Ketan was killed. If anyone is at fault in this, they should be given the harshest of punishment, even if it includes my own daughter. If my daughter is found guilty, then she should be thrown from the same place where Ketan was thrown from. This is the very remark that's made by her mother. Imagine the plight of the family. The same family who has been, in fact, cited as a justification in the very case by Sia and Chetan, that they did not want to elope so that the family doesn't face disreputation. Imagine, it's the same family, not just the matter of disreputation, but the matter of the kind of unsettling scene that's taken place, the case that's taken place, and the kind of situation, circumstances they're now having to face because of this entire cold-blooded murder that took place. Take a look at what the mother said while speaking to us.
1: यह मामला सुनके मुझे इतना शॉक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके. जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं. दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे. अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो. अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए. ये नहीं होना चाहिए था. और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सख्त सजा हो जाए. या तो उसे फांसी की सजा दो या फिर जहाँ से लोहगढ़ लेके जाके वहाँ से उसे गिराया जाए.
2: आपने फांसी की सजा की मांग की.
1: हाँ जी.
2: हाँ, आपकी बेटी है वो. हाँ, क्या महसूस करेंगे आप?
1: अगर वो दोषी है, हाँ, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए.
0: Omkar Wable joining us on the broadcast with more details on this. Omkar, you know, it's ironic how and very unfortunate how it's the same mother who is a part of the family that's been used as a justification by Sia and Chetan at this point, that yes, we didn't want to bring them any kind of dishonor and disreputation, which is why we ended up doing what we did. It's the same mother who has to today come up and say that even if my daughter is guilty, I demand death sentence for her. That is, I mean, I cannot imagine the plight of the mother right now, the distraught situation she might be going through to have to make the statement in the first place.
3: Exactly, because the name of Sia Goyal has emerged as the main conspirator in Ketan Agrawal's murder case. So when India Today spoke to Sia's parents, Praveen Goyal said that he had no idea about their relationship. He is not aware who the Chetan Chaudhary is, and that is how he confessed everything to India Today. And he was like, he had no idea what was going between both of them, because Chetan never came to their house, and even Sia did not mention his name in any conversation. So both parents, like Praveen Goyal, father of Sia, and Pooja Goyal, both are ready to face all the consequences now. They told me that they are ready for the further investigation. Interesting thing is, Sia's mother told us, if my daughter is proven guilty, she should be given death penalty, and which was quite extreme. But the important thing is, both were cooperating the investigation, and what India Today revealed even yesterday's investigation and today morning. So Pooja Goyal has clearly said that before this, her daughter had never mentioned Chetan's name at home, and that is why they were not aware what was going between Chetan Chaudhary and Sia Goyal. Back to you.
0: Right, Omkar. Thank you for bringing us those details and context behind what's been said by the mother now. And on that very note, viewers, just to take you through all the details that we have in this very case so far, while tracking it, India Today brings you the inside details of the chilling Pune murder case that claimed Ketan Agarwal's life. Probe details accessed by India Today revealed that Sia gave Chetan Chaudhary, the co-accused in this entire case, a pre-planned signal by sitting down. After receiving that very signal is when Chetan pushed Ketan off the fourth cliff, leading to his death. The probe also revealed that the duo chose murder over elopement, fearing that the elopement would bring disrepute to their families. During the investigation, they initially tried to blame each other for the murder. Chetan first denied being at the crime scene, while Sia later confessed to her role in the crime. Meanwhile, in an exclusive conversation with India Today, Sia Goyal's parents condemned her and demanded strict action if she is found guilty. Sia's father said that if his daughter is indeed proven guilty, the law should not spare her. He even said that she should be thrown off that same cliff from which Ketan was pushed. At the same time, the family maintained that they were unaware of any relationship between Sia and the co-accused Chetan Chaudhary. They claimed that Sia had agreed to the marriage herself and she had said that she liked Ketan and appeared quite happy with the relationship. Earlier, India Today accessed the CCTV footage of Sia and Chetan, this is the one that we're speaking of, allegedly plotting Ketan's murder. And this was just a day before the incident took place. June 17th, around 4:30 p.m., that's when this timestamp of the CCTV footage, in fact, suggests. The two entered this cafe in Pune, ordered food, allegedly planned the entire crime, or maybe finalized the very details of something that had been in the plans for quite some time, and then left the cafe around 5:30 p.m., just an hour after they had come into the same place.
4: सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये गोयल्स और अग्रवाल ये कैसे मिले एक दूसरे को और ये रिश्ता कैसे फाइनलाइज हुआ?
5: हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था तो हम गोवा गए थे. गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके. तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे. पहले तो ये लड़के की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके. उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे. उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेणु मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे. तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे. तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे, जो भी है तो लड़का अच्छा है बढ़िया है वो हिसाब से आगे की बात करते हैं. तो इतनी बात होने के बाद अगले दिन जब वो पूना शादी अटेंड करके वापस आए तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रेणु मित्तल का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए रिश्ता आया है तो तेरी क्या इच्छा है? मैंने वही बोला कि अभी तो दीदी ये 19 साल की है और 20 की भी पूरी हुई नहीं है और अभी तो मेरे को पहला शादी मेरे बेटे साहिल की करनी है, 3-4 साल बाद फिर देखेंगे सिया का. तो उन्होंने मेरे पे यानी कि बोला कि अच्छा खानदान है, अच्छी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो देख ले लड़की अच्छे घर में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे रिश्ते फिर कभी आते नहीं हैं. तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, जो भी आपकी भाभी पूजा से बात करके आज शाम को फिर कल आपको बताता हूँ.
4: ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ. मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना. क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
5: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई.
4: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं
5: पहचानते? पहचानते नहीं.
4: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है. मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे.
6: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था.
4: हाँ.
6: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था.
5: हाँ. मेरा साहिल.
6: उस टाइम पे ये मिले थे. हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं.
4: हाँ.
6: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
4: तो मुझे पूछना है कि फिर चेतन की बात आई कैसे सामने, क्योंकि आपको तो बाद में पता चला होगा ये सब होने के बाद कि आपकी लड़की ने ये सब कुछ कर दिया है। मुझे पूछना है कि बाद में तो आपको ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हुआ है और चेतन इसमें साथ में है। तो
6: मुझे तो 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं उनका, कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था।
4: तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं इस तरीके से, अलग अलग पार्टियां फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में दोनों साथ में बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं था?
6: मुझे कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
4: तो आप बताइए ऐसा कितने बार हुआ कि केतन अग्रवाल आपके घर पे आया है जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई, या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं, या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है?
5: केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफी टाइम आए, और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे, मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था, और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से।
4: क्योंकि देखो अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे, या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था?
5: कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है।
4: माँ से भी कभी बात नहीं की बेटी ने?
6: केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था, घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने, और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी, काफी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे उसने।
4: देखो क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है, या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी?
6: नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है।
4: अब तहकीकात में सामने आ रहा है कि सिया इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर थी, यानी कि आपकी लड़की ने बैठ के चेतन के साथ ये सब कुछ किया है। तो अग्रवाल ने आपके साथ इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं की, क्योंकि रिश्ता तो तय हो चुका था, फरवरी में एंगेजमेंट भी हो चुकी थी।
5: फरवरी में एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ, रिज कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, दोनों परिवार बहुत खुश थे, बीच में आना जाना मिलना हमारी मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से, मैंने बहुत सारी बात की सब, यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था, जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गए थे कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके, मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया।
4: तो जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
6: मुझे इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
4: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
6: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
4: जी,
5: और मैंने
6: केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हम लोग को ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
4: तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे।
6: हाँ जी,
4: तब भी
6: संडे,
4: बताया
6: संडे
4: था
6: उसे।
4: परफेक्ट।
6: हाँ जी,
4: तब भी बताया था।
6: हाँ जी
4: जी, उसके बाद फिर 14 को गए तब बताया था।
6: हाँ, बता के गई थी।
4: और 17 को, आई मीन 18 को जब जा रही, उसका 17 को आपका कॉल हुआ होगा?
5: कॉल हुआ था कि उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
4: जी,
5: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है, क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे, तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
4: ओके हाँ।
6: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
4: मोबाइल में चैट है उसका,
6: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है, अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
4: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
6: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
4: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया।
6: हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
4: ओके, मुझे और एक बताओ, महाबलेश्वर का प्लान था, उससे पहले बाली का क्या हुआ? तो ऑब्वियसली किसको पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला। क्या आपको एक बार भी सिया ने ये बताया कि ये शादी के लिए वो राजी नहीं है, उसका कुछ अलग है?
6: अगर सिया ये बात बताती थी तो बाली के जो उनकी शॉपिंग थी, जो मैंने उसको 50,000 रुपए में शॉपिंग कराई थी, अगर मुझे पता रहता था इनको कुछ है या नहीं जाना है, तो फिर हम क्यों शॉपिंग कराते थे उसे?
4: तो बाली के लिए जाने के लिए आपने 50,000 की शॉपिंग
6: कराई थी उसे?
4: वहां प्री वेडिंग शूट।
6: हाँ जी।
4: तो जब आपको ये बात पता चली कि आपके लड़की का इस पूरे जितना वारदात है उसमें हाथ है, क्या रिएक्शन था आपको, क्या लगा?
5: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था, वो बहुत अच्छी थी, मेरी हर एक बात का कहना मानती थी, कभी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, जो भी है हमेशा सच बोलती थी और वो सच्ची की राह पे ही चली हमेशा।
4: मैंने सुना आप इससे पहले आईसीयू में थे?
5: हाँ, बस आज ही सुबह आईसीयू से आज बाहर आया हूँ।
4: हाँ।
5: जब मुझे सुना कि ऐसा ऐसा है तो मेरा शरीर ढीला गिर गया। हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर राजपूत आए, तो उन्होंने बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इनको इमीजिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करो, शायद ये कोमा में जा सकते करके।
4: मुझे मतलब शॉकिंग ये लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था बिहाइंड द कर्टन, क्या सिया ने आपको एक भी बार नहीं बोला कि केतन अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसे मंजूर नहीं है, उसे नहीं चाहिए?
6: अगर सिया ये बात बताती थी तो मैं क्यों ये फंक्शंस करती थी? उसके बर्थडे का ड्रेस भी मैं दिला के लाई हूँ, उसके साथ बर्थडे की शॉपिंग की है, उनकी फैमिली भी आई थी उसे बर्थडे का ड्रेस लेने के लिए। अगर कुछ भी बात रहता तो हम आगे क्यों प्रोग्राम करते थे?
5: उल्टा उसमें अल्टरनेशन करना था, तो खुद बिचारी 2 घंटे तक उधर बैठ के अल्टरनेशन खुद ठीक से करा के पूरा, यानी कि प्रेस वगैरह करा के पूरा ड्रेस पैकिंग करके फिर लेके आई वो।
4: देखो, अग्रवाल फैमिली का ये कहना है कि सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
5: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
6: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
4: देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता थे तो तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी।
6: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
5: मैं
7: आप माँ हो उसकी?
6: हाँ जी, अगर वो उसने ये
5: तो बोलता
6: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
7: हाँ जी,
5: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: That's a detailed conversation you heard in terms of the perspective of the parents of Sia, what they have to say, what were they aware of, what did they know about. And a lot of it comes out into clarity in terms of how there was no sort of resentment of any kind from Sia. And that's what makes this extremely shocking in terms of how the events unfolded. Now, let's take you through the murder plot in a little more depth. The Push Ketan plot. We're tracking this story. Love, dhoka and dhakka at the end of the day. That's what happened. As bizarre as it may sound, that's what happened at the end of the day. Sia gave Chetan a pre-planned signal. What was that signal? That she sits down. And this was all planned out in a particular cafe. Remember the last day, June 17th. June 18th is when the incident took place. June 17th, they had met at a cafe and had finalized all the details of what exactly is to be done the next day at the Lohagarh Fort. Chetan pushed Ketan off the cliff right after he got that signal, which was a pre-planned signal. Sia and Chetan chose murder over elopement. That is the part which comes out to be extremely shocking, extremely, even for that matter, disturbing. Because their justification to having committed this crime is, we were trying not to elope. Instead, this is the path we chose. But does it really serve the purpose? That is a question we are asking. Is ending a life indeed the solution? And the solution to not bring dishonor and disrepute to your family? Well, there is a question that they need to reflect upon. Duo feared elopement would bring disrepute to the family, and initially when the investigation had just begun into this entire case, they blamed each other for the murder till Sia came out and said that yes, she had played a role. She had played her part in this crime. Chetan, however, at the beginning had denied being at the crime scene altogether, which the police tracked later. There was a certain person roaming about at the Lohagarh Fort wearing a given hoodie, and that too on a scorching summery day, and with the hoodie pulled over the face so that the face is not visible on the cameras in the Lohagarh Fort. And this is what's been revealed in the probe so far. But it doesn't end there. On that note, let's also take you through how, with each passing day, the investigation that continues, it only gets murkier as to how the duo planned this entire thing. Sia and Chetan met at a Pune cafe, which we were bringing to you the CCTV footage of just a little while back. So this was just a day before Ketan's murder, June 17. That's the day that we're flagging for you, so that you get a better idea of how the sequence of events played out. The duo then plotted the murder during their meet. They finalized how they will be executing the very plan. They zeroed in on Lohagarh via YouTube. That's what's being said. However, now it is Sia's mother who also has come out to say in the conversation that we just heard that Ketan was the one who had pushed forward for the Lohagarh trip in the first place. Well, how much of that is true? How much of that is untrue? Well, that's something that will come out in the investigation. Sia, however, at the same time had wrecked the Lohagarh Fort as early as May 31st. So this was not a spur-of-the-moment crime at all. It was a well-planned, well-thought-through plot that was in fact planned over a period of time. Sia and Chetan killed Ketan on June 18th. That is the fateful day when Ketan ended up meeting his death in that 400-meter deep gorge right off the very cliff that the fort is located on. Extremely unfortunate, extremely shocking to say the least. But yes, the details are still coming in to assess and analyze if there were anybody else involved, or is it just the two, and what are the charges against them at this given point? On that very note, we'll be slipping into a short break. On the other side, we're tracking another very big story, which we will be bringing to you details of. Yogi Adityanath, Chief Minister Yogi Adityanath, cracks down on the Chanda chores of Ram Mandir. All eight accused, named in FIR, arrested. Temple Trust close aid also held. Uttar Pradesh police to investigate the SIT findings. Akhilesh hits out, says small fish being caught. Opposition to the Yogi government demands arrest Champat Rai.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
10: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
11: Emerging campuses and value for money options. Discover the institutions shaping tomorrow's leaders. India Today Best Colleges Survey 2026, out on 26 June. Subscribe now and get 500 rupees off with the code COLLEGE2026.

0: Welcome back, viewers. You're watching The Burning Question. And at the top of this segment, we have breaking news coming in from the political arena from the state of Maharashtra. Now, it's the UBT Sena MP who's raised questions on Sena donations. Sanjay Raut says, and I quote, "Where is the 4kg silver brick donated by the Sena? 1 crore and silver brick donated by Uddhav Thackeray. Brick presented in presence of the Sainiks and Seers. Years later, no receipt or update from the very trust." Sanjay Raut questions over the missing silver brick from Ram Mandir. Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut claims that the 4kg silver brick that was donated for Ram Mandir construction has no receipt or update from the very trust. Raut says Uddhav Thackeray has donated as much as 1 crore rupee and the silver brick in the presence of the Shiv Sainiks and Saints. But there is no record and no receipt of the same. Vidya joining me on the broadcast with more details on this. Vidya, we're already looking at mounting opposition pressure on the government and the investigative agencies with regards to the Chanda Chor story that we're already tracking with regards to the Ram Mandir. But now Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut seems to have also joined that particular bandwagon of the opposition leaders asking questions with regards to where, and this question is with regards to where is the donation that was made by Uddhav Thackeray. What more details do we have?
1: Well, Shiv Sena actually has had a very, large history, given the fact that, car sevaks had been sent from here for the construction, breaking of the Babri Masjid, if you remember. And since then, so Shiv Sena has been contributing and forcefully asking for the Ayodhya temple to be created. And when it was done, this Uddhav Thackeray had donated about 1 crore rupees and a silver brick. Now, years later, when an FIR, the SIT report really came about, and an FIR has now been registered at Ayodhya, the Shiv Sena UBT faction remembered that they had given them their photograph of Uddhav Thackeray, donating, and Aditya Thackeray beside him, donating the brick. And they remembered that, they had done this, and for the last many years, in spite of the donation, they never received any receipt. Which is basically an acceptance, a formal acceptance by them about it. So they really do not know as to what really happened to that 1 crore rupees and the silver brick that had been given, whether it was accounted for, not accounted for, because given the fact that they did not receive a receipt for the same, they believe that, it probably was usurped by someone.
0: Right. Right, Vidya. Thank you for bringing us that context into this particular allegation, or rather a question that's been posed by Sanjay Raut with regards to where their donations, the Uddhav Thackeray's donations, the Sena UBT's donations to the Ram Mandir is at this given point. On that note, let's also take you through all the politics and the investigation that's gone into the Ram Mandir donation scam that we are tracking. The investigation is on, the FIR has been filed, and the Yogi government has swung into action in the Ram Mandir donation scam. A case was registered against as many as 8 people involved in the scam on Thursday, and all 8 have been arrested now. The complainant alleged that the group systematically siphoned off temple donations and offerings, and the accused are Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Manish Yadav, Ramashankar Mishra, Shubhash Karunesh, Love Kush Mishra and Ram Shankar Yadav, who is also known as Tinnu Yadav and is a close aide of the Temple Trust Committee's General Secretary, Champat Rai. He's the driver of Champat Rai. Meanwhile, the opposition, including the Samajwadi Party, has been targeting the Yogi government over the matter. Akhilesh Yadav's own party has also demanded Chief Minister Yogi Adityanath's resignation, alleging that only small fish will be punished in this investigation, while the big fish will be spared. The VHP, which played a crucial role in the Rama Janmabhoomi movement, has welcomed the action against the accused and demanded a thorough probe into the very matter. These are the responses we have so far. Take a look.
2: Namaskar, main aaj tak se bol raha hu. FIR darj hui hai. Usme Rama Shankar Yadav aur Tinu Yadav, aapka naam hai.
3: Ji.
2: Aapka kya kehna hai?
3: Ji.
2: क्या कहना है आपका?
3: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कहना.
2: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ. हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है.
3: सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया. ठीक है जी, नमस्कार.
4: मुझे प्रसन्नता है कि FIR हो गई. मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं उनकी जांच हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें।
5: ये कि जो एफआईआर इन्होंने किया वो एफआईआर भी कांग्रेस के दबाव में हुआ, क्योंकि कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर महामहिम राज्यपाल को हमने पत्र दिया कि तत्काल वो सरकार को निर्देश दें, ट्रस्ट को निर्देश दें कि वो लोग मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। कल हमने दिया पूरे 75 जिले में, बनारस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां रोका कि हमारे शहर अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को गेट बंद कर दिया गया डीएम कार्यालय का। तो सड़क उतरने का नतीजा है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है, पर उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो इन सब चीज़ों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो नृपेंद्र मिश्रा जी की है, जो 5 साल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, 5 साल 3 महीने, तो उनको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री के सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बचा रहे हैं, ये साबित हो रहा है, सरकार बचा रही है, केंद्र की सरकार।
0: On that note, we're shifting our focus to a different story that's now come to light from Madhya Pradesh. Massive controversy has erupted over a Muharram procession in Madhya Pradesh's Ujjain. It's a video from the procession that's gone viral showing two young men standing atop a van and waving red flags before, just seconds before, it was detonated. The vehicle bore the words, Le Fir Agaye, on its windshield. The van was suspended about at a height of 40 feet in the air by a crane and then blown up during the Muharram procession with firecrackers. An FIR has been registered against 4 people after the video surfaced. Meanwhile, clashes and stone pelting incidents were reported from several other places ahead of Muharram. In Uttar Pradesh's Hapur, stone pelting was reported between 2 groups on Thursday. Several people were injured in the very incident. Similarly, in Bihar's Shiohar, violent clashes broke out after 2 groups came face to face. The clashes and subsequent stone pelting left several people injured.
6: बडनगर की एक घटना है जिसमें एक गाड़ी जो है क्रेन से लटकी हुई दिख रही है, जिसमें कुछ विस्फोट हुआ है और ये पता चला है कि इसमें जो आरोपी शोएब पिता गब्बू खान निवासी अडान मोहल्ला जो है वहाँ का ये सारा मामला है, उसके विरुद्ध अभी एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। धारा 185, 287 और 285 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके। इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
7: सर, मुहर्रम की सुरक्षा को लेकर सर किस तरीके के सर इंतजाम सर पुलिस के स्तर पर किए गए हैं, सर कितना फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया?
8: जनपद संभल में 26 तारीख को मुहर्रम के 10वें दिन 329 ताजी हैं वो निकाले जाएंगे। जनपद के विभिन्न थानों में मोहल्ला स्तर तक मीटिंग्स हैं वो कर ली गई हैं। जनपद स्तरीय पीस कमेटी की मीटिंग के अंदर क्लियर कट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिसमें सभी मुतवलियों को बुलाया गया था और सभी डीजे संचालकों को भी बुलाया गया था। बताया गया कि ताजिए की हाइट 10 फीट से ना ज़्यादा हो और जमीन से गाड़ी समेत 12 फीट से ज़्यादा ना हो।
9: वातावरण में जुलूस निकले और शांतिपूर्वक पर मनाने के चलते हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और जो पूरा जिला में 400 लगभग प्लेसेस सेलेक्ट किया गया, सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो वहाँ पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी और पेट्रोलिंग किया जा रहा है और QRT 10 संख्या में किया गया है और उसके अलावा सेंसिटिव प्लेसेस में स्टैटिक फोर्स भी दिया गया है, एक SSB फोर्स मिला है और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय की तरफ से बहुत सारा फोर्स मिला है, होमगार्ड है, चौकीदार है और BSAF है, पर्याप्त संख्या में बल है और उसका प्रतिनिधित्व कर दी गई है।
0: Ravish Paul Singh joins us on the broadcast with more details on this particular case now. Ravish, ये जो अभी जो 4 लोगों के अगेंस्ट चार्जेस बुक किए गए हैं, ये चार्जेस क्या क्या है और इस हादसे के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले भी हम जब बात कर रहे थे इस बारे में तो ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा अरेंजमेंट किया गया था ये एक तरफ से एक सेलिब्रेशन के लिए किया गया था और एक कंपटीशन की तरह देख रहे थे ये लोग कि कैसे इनके सेलिब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा उसमें रौनक लाया जाए उनके मुताबिक, पर एट द एंड ऑफ द डे ये वैंडलिज्म का ही केस है।
10: बिल्कुल, और जो सेक्शन भी लगाए हैं बीएनएस के, उसमें वैंडलिज्म के साथ साथ दूसरे चार्जेस भी हैं जो कि पुलिस ने लगाए हैं। और अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि जो एलिगेशन लगाए गए थे और जो एफआईआर लॉज हुई थी जिन लोगों के खिलाफ, उनमें से तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहे हैं अलग अलग आउटफिट के, उसे देखते हुए पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तीन लोगों को न केवल अरेस्ट किया, बल्कि वो तीन लोग जिन्होंने इस पूरे स्टंट को वहां पे परफॉर्म किया था उनका प्रोसेशन भी निकाला है पुलिस ने वहां पे उस लोकल इलाके में वडनगर में जहां पे इन्होंने ये ब्लास्ट किया था मुहर्रम के जुलूस में। देखिए, मुहर्रम का जो रिलीजियस जुलूस था, हमने कई जो मुस्लिम आउटफिट है उनसे भी बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ये जो डिस्प्ले किया गया है ब्लास्ट ये गलत है, और प्रोसेशन में जो मुहर्रम का प्रोसेशन होता है उसमें कभी भी इस तरीके का कोई डिस्प्ले जो है वो होता नहीं है, ये पहली बार वो खुद देख रहे हैं अपनी जिंदगी में कि इस तरीके से एक रिलीजियस प्रोसेशन में ब्लास्ट को डिस्प्ले किया गया है। ये एक तरीके से काफी ज्यादा सीरियस है और मुस्लिम आउटफिट भी इस बात को मान रहे हैं, ऑल्दो वो ऑफिशियली इस बात को भले ही ना कबूल कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो एक्शन वहां हुआ है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, जो लोग वहां खड़े थे उसमें काफी सारे महिलाएं थे, बच्चे थे, पुरुष थे। पुलिस को भी ये लग रहा है कि जब वहां पे ब्लास्ट हुआ तो जो मेटल के पीसेस थे, ग्लास के पीसेस थे, वो लोगों को लगे होंगे या फिर गंभीर घटना हो सकती थी।
0: बिल्कुल,
10: हो सकता है ब्लास्ट के बाद ये वैन जो है वो नीचे गिर सकती थी। ऐसी कई सारी चीजें थी जिसे लेकर के पुलिस ने फिलहाल बीएनएस के कई सेक्शन पे केस दर्ज कर तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और अब पुलिस जो एब्सकॉन्डिंग है, क्रेन का जो ओनर है गोपाल, उसको सर्च कर रही है और उसे भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की का जो दावा है वो कर रही है।
0: जी रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट द केस, द इन्वेस्टिगेशन दैट हैज ऑलरेडी बिगन इनटू इट एंड द फोर पीपल हुव बीन इनफैक्ट हु हैव केसेस अगेंस्ट देम, वन ऑफ देम इज इनफैक्ट एट दिस गिवन पॉइंट द क्रेन ओनर इज एब्सकॉन्डिंग एंड द पुलिस हैव सेड दैट द मैनहंट इज करंटली ऑन फॉर द सेम। On that note, we're shifting our focus to a different story, and this is from the world of tech. Apple has increased prices of its MacBook and iPad lineup in India, with some models seeing a steep jump of up to rupees 1 lakh. The revised pricing comes just a few days after Apple CEO Tim Cook recently announced that price hikes were unavoidable. Now, the move affects both MacBook Air and MacBook Pro variants, along with Apple's newly introduced budget laptop segment. The MacBook Air with M5 chip, which was launched in India at Rs. 1,19,900, is now listed at Rs. 1,49,900 rupees. This marks a jump of as much as Rs. 30,000 in just a short span of time, that too. The 15-inch MacBook Air variant, which was earlier announced at Rs. 1,44,900, now carries a price tag of Rs. 1,79,900, now showing again an increase of rupees 35,000. The base 14-inch MacBook Pro with M5 chip and 16GB RAM, which was launched at rupees 1,69,900, is now listed at rupees 2,39,900. This translates into a steep increase of rupees 70,000, making it one of the most notable price adjustments across Apple's recent portfolio in India. In the case of the M5 Max variant of the MacBook Pro, which is 14 inches, the price has been increased by Rs. 1 lakh. The 11-inch iPad Air with the M4 processor will now cost you Rs. 89,900 against its original launch price of Rs. 64,900. This means that Apple has hiked the price of this iPad by as much as Rs. 25,000. Similarly, the iPad Pro has also become more costlier with the M5 chip and base 256GB storage, now costing Rs. 1,39,900 in India. It was introduced last year at Rs. 99,990. So Apple has basically increased the price by Rs. 39,910. So several of these price increases, that price hikes that are coming to the forefront. And to bring us more details on the same, we are being joined by our colleague Cyrus John. Cyrus, a very good morning to you. You know, Firstly, I would want you to throw some light with regards to the reason behind the price hike, and quite a steep hike at that, and the several products, the maximum amount of price hikes that we've seen across these products, if you could just list them for us.
11: Good morning, Sriya. Yes, the one reason that people can cite is the global memory shortage. So when you manufacture these laptops, you have to have memory like RAM and flash memory where you store all of your data. Now, considering that all of these data centers also run on these memory chips, they have been hogging the supply chain and demanding an increase in the prices of these memory chips. So all of the supply chain, even the people who are making these chips, are supplying most of these memory chips to AI data centers, and very little left for OEMs like Apple and other laptop makers. And this is exactly why they have increased the prices of the iPad and the MacBooks for now. Now, Tim Cook has cited that there may be a rise in the price of the iPhone in the coming days, although that price has not been transferred to the consumers for now. But for the MacBook and the iPad, the company said that it's inevitable and they had to increase the prices purely because of the pressure, the mounting pressure that AI companies are putting on these memory chip manufacturers to supply it to them. Because to run these heavy data centers to process all of the AI that you are using on your smartphones right now, you need these memory chips. And without them, you cannot operate these AI data centers. So the supply chain shift, most of the memory demand has shifted to these AI centers, which leaves very little for laptop makers and also hardware makers. And it's just not Apple. This kind of a pressure is being felt across the industry, with other laptop manufacturers also expected to rise prices in the coming months. But yes, Apple, since their supply chain is massive and it's across the globe, they are feeling the brunt the most right now, and which is the reason that they have increased the prices across their hardware devices, especially the Macs. Now, the surprising bit is they just recently launched a budget laptop at under 60,000 in India. And for that also, they have to increase prices. So yes, the consumers are finally going to face the brunt of this AI boom that's happening, purely because the memory chips are now being taken over by these AI data centers, right, and very little for the hardware makers. Mm.
0: So the Apple users will now be finally feeling that pinch on their pockets at this given point. Cyrus, thank you for putting all of that into perspective for our viewers. On that very note, viewers, we are wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned as we come back on the other side of this break with more news and updates.
12: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
13: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
14: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your

0: On that note, we're now shifting our focus back to the horrifying case, the Lohagarh murder case that we've been tracking so closely. Pune Rural Police have recorded the statement of Neeraj Kumar, who worked at Chetan Chaudhary's dry fruit merchant shop, Dhanashree Sales, that is. Police said that on June 18, Chetan left his own mobile phone at the shop with Neeraj Kumar and went to Lohagarh Fort using Kumar's phone. Neeraj Kumar's statement is considered significant in establishing Chetan Chaudhary's alleged involvement in the very case. Because remember, he, since day one, has been denying involvement in the very case, even though when evidence suggests otherwise from the very probe that continues. Police found that Chetan's mobile internet was off from 7 a.m. to 5:40 p.m. on June 18th. And during this very period, the phone only received incoming calls. This has increased the police's suspicion regarding Chetan's alleged role in the Ketan Agarwal murder case. Police also found that Neeraj Kumar's phone location was traced to Lohagarh Fort while he was nowhere near that very location. He was back at the shop. So yes, several revelations coming to the forefront as the probe is picking up pace in this particular case. What we do look at now is Chetan having used his colleague, or the person who used to work under him in this co-worker, Neeraj Kumar's phone. That's what he carried with him to Lohagarh Fort. That's what Neeraj Kumar has also come out to say in his statement when the police questioned him. This will come out to be very crucial in terms of in evidence that shows Chetan's involvement and establishes the fact that he is a co-accused in the very case alongside Sia. On that note, Omkar Wabley joins us back on the broadcast with more details on this particular revelation that's been coming to the highlight now. Omkar, yet another turning point, one may say, in the investigation with Neeraj Kumar, his co-worker, Chetan's co-worker, being traced down, questioned by the police. Now, this phone that was being used, Neeraj's phone that was being used by Chetan, whose location has been traced to Lohagarh Fort, how crucial a piece of evidence will this turn out to be proving Chetan's involvement in the entire crime?
1: Well, the Kumar's statement has been recorded as a part of probe in Ketan Agrawal's murder case. So, crime sequence shows that Chetan Chaudhary, one of the prime accused, he left his cell phone behind in the in his father's shop and took his employee's phone, Neeraj Kumar's phone, and that's how he went to the Lohagarh Fort, and then he executed this crime with the help of Sia Goyal. So, during the investigation, police got to know that location of that Neeraj Kumar's phone was found on the Lohagarh. Look, during interrogation, Neeraj Chaudhary is not accepting. He's saying he was there on the fort. The location has already tracked, but he was not on the spot from where Sia committed the crime. So the interesting thing is, statement has been recorded, and when the probe intensified, police got to know that Chetan Chaudhary's phone was that phone's internet was off from morning 7 a.m. till evening 5:40 p.m. So that is how police got to know that something is suspicious, and they cross-interrogated him, and then after all that things, finally he confessed that he was there on the fort. Back to you.
0: Right, Omkar. Omkar, do stay with us. We will just take our viewers through the details of the case so far that we have been able to unravel and understand from the information we're accessing. And then I'll come back to you with more for more details into the very probe that continues into this case. India Today, viewers, brings you the inside details of this chilling Pune murder case that claimed Ketan Agarwal's life. Probe details accessed by India Today reveal that Sia gave Chetan a pre-planned signal by sitting down. After receiving that signal, Chetan pushed Ketan off the fort's cliff, leading to his very death. The probe also revealed that the duo chose murder over elopement. Why? Simply fearing that eloping would bring disreputation to their families. During the investigation, they initially tried to blame each other for the murder. Chetan first denied being at the very crime scene, while Sia later confessed to her role in the crime. Meanwhile, in an exclusive conversation with India Today, Sia Goyal's parents condemned her and demanded strict action if she's found guilty. Sia's father said that if his daughter is proven guilty, the law should not be sparing her. He even said that she should be thrown off the same cliff from which Ketan was in fact pushed. At the same time, family maintained that they were unaware of any relationship between Sia and the co-accused Chetan Chaudhary. They claim Sia had agreed to the marriage like Ketan and appeared happy with the very relationship. Earlier, India Today had accessed the CCTV footage from June 17th of Sia and Chetan allegedly plotting Ketan's murder. Why is the date important here? Because it's just a day before the murder was executed. At around 4:30 p.m. is when the duo was seen entering the cafe in Pune, ordered food, allegedly planned the entire crime there and finalized its details of execution. And at around 5:30 p.m., just an hour later, they left the very cafe.
2: मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ. मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना. क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
3: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई.
2: आप पहचानती नहीं था? आप भी नहीं पहचानती?
3: नहीं थी, पहचानती नहीं. जिन्होंने रिश्ता कराया कम से कम वो उनसे टॉकिंग करते थे, भाई ये कुछ गलत हो रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि आप थोड़ा उनके पेरेंट्स या के पेरेंट्स से बात करो, क्या बात है क्या नहीं. उन्होंने ये बात उनसे भी नहीं कही, डायरेक्ट हमसे भी नहीं. कम से कम वो ये खुलासा हो जाता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें बताना चाहिए ना.
2: तो मुझे बताओ कि ये शादी का खर्चा वैसे कर कौन रहा था, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि इतना महंगा महल बुक किया गया था, प्री वेडिंग के लिए बच्चे बाली जा रहे थे.
3: शादी का खर्चा तो सर देखिए, मैंने मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि मेरा इतने का बजट है, इससे ज्यादा मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता.
2: तो क्या उनकी मांग थी कि और थोड़ा खर्चा होना चाहिए?
3: उनकी मांग थी नहीं वैसे, पर बाद बाद में थोड़ा वो बोलने लग गए थे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ये इतना करो करके. तो मैंने जब रिश्ता पक्का किया, जब हमारे सिस्टर थी, जीजा जी थे और बीच में ए अग्रवाल भी थे जिन्होंने ये रिश्ता लेके आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं 3-3.5 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता और मेरी ताकत नहीं है करके. फिर भी जीजा जी ने, सिस्टरों ने
2: 3-3.5 करोड़ की बात.
3: हाँ जी, 3-3.5.
2: क्या कारोबार है आपका सर?
3: मेरा ड्राई फ्रूट का मार्केट एड में बिजनेस है जी.
2: ओके, कितने सालों से वैसे करता?
3: काफी हमारे दादाजी के टाइम से है
2: जी.
3: तो मेरी यही बातचीत हुई थी. तो जो ये 16 करोड़ 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है.
4: वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था. घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने और सब बच्चे दोनों खुश थे. उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी. काफी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे. उसने
2: देखो, क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी?
4: नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह. हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्होंने पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है.
2: जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
4: हाँ, मुझे इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ. पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का.
2: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
4: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
2: जी,
4: केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के. उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके. पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा.
2: तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे.
4: हाँ जी,
0: Ram Mandir donation scam case. Now, Yogi Adityanath's crackdown on Chanda Chores, all 8 accused named in the FIR have been arrested. Temple Trust's close aide also held in the investigation. New people is to investigate the SIT findings that have been submitted. All of these with more details on the other side. Stay tuned as we come back.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: First Up, India Today gets you inside scoop on the Ram Mandir donation scam. Sources tell India Today that CCTV cameras caught staffers stealing cash and that bundles of 500 rupee notes that went missing. Sources further said that police recovered 10 lakh rupees from one of the accused and that currency notes were removed while the cash was being deposited in the bank. Meanwhile, a case was registered against 8 people allegedly involved in the scam on Thursday, and all 8 have been arrested. The complainant alleged that the group systematically siphoned off temple donations and offerings. The opposition, including the Samajwadi Party, has been targeting the Yogi government on this matter. Akhilesh Yadav's party has demanded Chief Minister Yogi Adityanath's resignation, alleging that only the small fish will be punished while the big fish will be spared. VHP, which played a crucial role in the Ram Janmabhoomi movement, has welcomed the action against the accused and demanded a thorough probe in this matter. Amid this, Shiv Sena UBT has questioned the donations, asking where is the 4 kg silver brick donated by his party to the Ram temple.
1: Namaskar, main aaj tak se bol raha hu. FIR darj hui hai. Usme Rama Shankar Yadav urf Tinu Yadav, aapka naam hai.
2: Ji.
1: Aapka kya kehna hai?
2: जी,
1: क्या कहना है आपका?
2: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं कहना।
1: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है।
2: बस सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार।
3: मुझे प्रसन्नता है कि FIR हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो FIR में हो या नहीं, उनकी जांच हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें।
4: सड़क उतरने का नतीजा है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है, पर उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया। उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो, इन सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
0: Let me take this to my colleague Simar Chawla joining us live. Simar, before we talk about the politics that is playing out and how fingers are being pointed out on the Yogi government, do take our viewers through details of the modus operandi used by those who carried out the theft despite CCTV cameras heavily installed across every vantage point.
5: Well, the investigation has in fact revealed that this whole donation theft was carried out in a very systematic manner. There were several employees who have been named in the FIR who have also been arrested. They were the people who in fact in connivance working together in systematic manner to in fact do the donation theft. Now, what are the sources that have been telling us? They have been telling us that several of the tricks were being adopted by these people to in fact manage this bank. And at the time it was being deposited to the bank, those notes were being taken out. After that, what we saw that there were CCTV cameras which were being installed, which were used to, in fact, monitor the whole counting process. They used to systematically come in front of the camera just to give a leverage, or to give a shake to the other person who was in connivance. And at that particular moment only, some of the notes, some of the bundles were, in fact, being taken out, were being hidden. By the in particular individual. What we are learning from our sources is that the money which was being taken out from the donation box, they were being given to the other person who used to go to the washroom and in fact hide it in its pants. And when he got the chance, they used to take it out from that particular premises. Now these are the minute details on which police is working. They are also trying to ascertain the fact that who were the people who were in fact in this particular matter. Some of the bank officials are also involved. What we are learning, the questioning is right now going on, and the main accused, Tinu Yadav, has in fact confessed in the police investigation that some of the bank officials were in connivance, and with the help of them only they used to in fact siphon off the funds. Let's say for example, this whole scam came out after some of the officials noticed that there were 7 to 8 lakh rupees coming in front in the form of donation, but when it was submitted in the bank, the amount was likely less. From that particular moment, the suspicion came, and this whole systematic working is being exposed by the SIT, and then the police is also included in the FIR. So now the investigation is on. Some of the unknown people are also in the FIR. So apart from these 8 persons, there are several government employees, bank officials who were involved in this particular scam. And as far as the investigation is concerned, as the investigation proceeds, the names will be included. Now, it remains to be seen that whether the heat of the investigation will reach to the big fishers like Champa Thrai or the other people, or some of the people who have been detained or arrested, they only be made the scapegoat in this very particular matter. Over to you.
0: Exactly the question that is also being asked by the opposition. I request you to stay on with us as we quickly take our viewers through details of what has come in from sources so far as far as the temple donation row is concerned. The inside scoop, as is being revealed, that cameras caught the staffers stealing cash, 500 rupee note bundles that had gone missing, and cops recovered 10 lakh rupees from one of the accused. In fact, that money that was also found in his personal account, jewellery theft, that had happened even before the official inventory was entered. Stolen funds that were found in the personal account of one of the suspects, extra notes that were inserted into those bundles in order to cover up so that it does not come across, the theft does not show. In the start, notes were removed during depositing in the bank. Now, remember, all of this coming in from sources. Let me take this back to my colleague Simar Chawla to also talk about the many questions that are being asked by the opposition at this point. Even though the Yogi government has assured that the perpetrators will not be spared, VHP has welcomed this investigation. And honestly, when it comes to the Ram temple, of the struggle that it has been for all the devotees, this is not just another temple. This is a sentiment. This is an emotion. And this is something that has hurt millions of devotees to know that these are the sort of thefts that are happening internally while they donate with all the feeling and faith that they do. What is the Samajwadi Party saying, and how is the Yogi government responding to it?
5: Well, the opposition has gone all out in this very particular matter. The reason being, BJP has been the flag bearer in this very particular case, starting from the Ram Janmabhoomi movement to the making of the Ram Mandir, that happened a few years back. Now, the opposition, just keeping in mind the elections which are coming in UP next year, they have in fact gone in all-out mode. The Samajwadi Party, just after the FIR registered, the Akhilesh Yadav, who is the party chief, in fact tweeted that the small fishers are being framed and the big fishers are being let go. He also raised the question that why not Champa Thrai and other officials are all included in the FIR. Why are they not named? Aam Aadmi Party is trying to gain some momentum, who is trying to gain some ground in the upcoming election. They are raising the issue. In fact, Arvind Kejriwal and Sanjay Singh are physically present in Ayodhya right now, going for the Mandir Darshan, raising this issue. In fact, Sanjay Singh met the SIT chief Vijay Vishwaspant, gave several papers claiming that Champa Thrai is directly involved in the sale and purchase of the land. So opposition is, in fact, we saw that Uddhav Thackeray also joined in this very particular attack in the BJP government, claiming that a silver brick was being given by him to the Mandir Trust, and also 1 crore rupees cash, but he never got the receipt of this particular funds till date. So these are the attacks which have been coming from the opposition since yesterday. UP government, however, has not spoken much about it ever since the FIR has been registered. There has been no official response from the government itself. We are likely to have some responses that has been coming from the CM. In all likelihood, we are going to have some of the statement on Ram Mandir by the CM Yogi itself. But as of now, it's only the opposition that have been targeting the BJP government, the administration on this Ram Mandir issue. The politics is fired up, the parties are fired up, and keeping in mind the elections that have been coming in the UP in next year, so we can say that it's a very pretty important issue, and now the government...
0: Simar, I'm having to interrupt you here, but Chief Minister Yogi Adityanath speaking on this issue. Let's listen in.
6: Prabhu Sri Ram ki maryada ka palan karna sikho. और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष हुआ है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था राम लोगों की जो दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे, लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था, नोचा था, बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे, बेमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता? जब इनकी सरकारें थी क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती में, जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहस से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना सलेमपुर। हमें लगता है देखो अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है, और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो रहा है, हो पा रही है। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रोंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गया होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने इसका टेंडर कर दिया था 2016 में। ध्यान से सुनिए, टेंडर किया था इन्होंने 110 मीटर चौड़ा, 340 किलोमीटर लंबा। इसकी लागत इन्होंने तय की थी 15,800 करोड़ रुपए में, 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत इनके समय में आ रही थी। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मैंने 4-5 महीने के बाद जब मैं समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भी क्या प्रगति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों? कहा साहब जमीन ही नहीं है। मैंने कहा जमीन नहीं तो टेंडर कैसे हो गया? फिर मैंने पूछा ये बताओ कि जमीन के लिए क्या कर रहे हो? कोई भी हरकत नहीं। हमने कैंसिल किया। मैंने कहा पहले जमीन लो। जमीन लेने के साथ पहले अलाइनमेंट तय, फिर से बनाया गया ठीक 340 किलोमीटर लंबा। लोगों ने कहा कितना चौड़ा होना चाहिए? मैंने कहा पहले 110 मीटर था, उसको 120 मीटर करो, हो सकता है बाद में कभी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़े, कभी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हाई स्पीड ट्रेन इस पे चलानी पड़े।
0: And that's the big word coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who's vowed action against those who've carried out thefts in the Ram Mandir, as he said that there will be zero tolerance towards any crimes of this nature.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो,

0: हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
1: तुम साइन करोगे नहीं?
0: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
1: आए तुम साइन करोगे नहीं?
0: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: सीटी बजाना बंद करो।
1: तो फिर क्या बजाएं?
2: हम ही लोग चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर। हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
3: Mirzapur the movie aims to translate the franchise's signature blend of violence, political intrigue and morally complex characters into a full-scale theatrical experience. More than just a spin-off, the film represents a significant milestone not only for Mirzapur but for Indian streaming properties, making the leap from OTT platforms to cinema halls.
4: भैया नमक तो ठीक डाले थे, कम लग रहा है क्या?
5: हम कब बोले कि खाने में डालना।

0: News coming in now from Maharashtra. Victim Ketan Agarwal's father has met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. The Chief Minister's office has put out a statement, and I quote it here first. In the case of the tragic murder of Ketan Agarwal that took place in the rural area of Lunavala, Ketan Agarwal's father, Vishal Agarwal, met with the Chief Minister in Pune, demanding justice for his son. We are committed to ensuring that the guilty in this case receive the harshest punishment. Chief Minister Devendra Fadnavis assuring them at this time that no stone will be left unturned to deliver justice to the family. Now, their demand is to establish a fast-track court in the case and appoint even Ujjwal Nikam as a special public prosecutor. And that demand has been immediately accepted by the Chief Minister. I reiterate here, the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, has met the family members of Ketan Agarwal, who were basically getting their son ready to get married, instead are now fighting for justice in his death. Their demand to establish a fast-track court and appoint Ujjwal Nikam as a special public prosecutor has been approved.
1: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे. खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सबरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत. मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये. पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे.
2: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए.
3: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
2: जी? मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी. उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है.
3: एसआईटी की मांग की आप पिच पर?
2: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है.
0: Omkar Wable is joining me for the latest on this. Omkar Wable, in fact, got us that first exclusive with the parents of Sia Goyal as well, who's now being seen as the main accused. Omkar, tell me this. With this meeting, what do you think can change for Ketan Agarwal's parents? What is their expectation and what will a fast-track court really do in this case?
4: Vishal Agarwal had a meeting with Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis at Ganesh Kala Kreda Bunch in Pune. Both were discussing this topic almost 15 minutes. So Chief Minister of Maharashtra spoke to him exactly what happened, how things went ahead, and he also, Vishal Agarwal also briefed him a little bit. Then he submitted a letter to Devendra Fadnavis and demanded that this case should be treated in the fast track court and it shall come to the conclusion as soon as possible. Second, He has demanded, he's already written in the letter, that Ujjwal Nikam should be appointed as a special public prosecutor in this whole case. So if the Ujjwal Nikam is appointed, then in upcoming times, total dynamics could change in this whole Ketan Agarwal's murder case. Also, Chief Minister Devendra Fadnavis has written his remark on the same letter that he has given order to the law and order. He has given order to the Secretary of Justice and Law of Maharashtra, and he also said that give instructions to Ujjwal Nikam that he shall be appointed as a special prosecutor in this case. Back to you, Pooja.
0: Omkar Wable is telling us all the latest that's been happening. What a terrible tragedy that has unfolded. And India Today wants to now bring you the inside details of the case. Probe details accessed by India Today reveal that Sia Goyal gave the alleged lover, boyfriend Chetan Chaudhary, a pre-planned signal to sit down. After receiving the signal, Chetan is the one, according to Sia, telling the investigators, Chetan was the one who pushed Ketan off the fourth cliff, leading to his death eventually. So it wasn't the girl, is what she's claiming to the investigators. The probe reveals that the duo chose murder over elopement or saying no to the marriage because they thought that if they elope, that could bring disrepute to their respective families. During the investigation, initially tried to blame each other also for the murder. Chetan first denied being at the crime scene. Sia later confessed to her role in the crime as well. But remember, the cops are going to be grilling them constantly. Cross-questioning may happen, but also there will be other evidence like this, digital evidence, CCTV footage, or even the phone internet record calls that will have to be combined together for a watertight case. His phone, Chetan Chaudhary's phone and internet, was switched off between 5:40 p.m. on 18th June. and he went to the fort without his phone, which the cops found very strange. He did use a phone which was of a co-worker. Now, that co-worker statement has also been recorded. Amid all of this, remember, it is focused now on this young woman, 20-year-old Siya Goyal, because it's her role that kind of connects everyone else. India Today exclusively spoke to Siya Goyal's parents, who have condemned her and even demanded strict action if she's found guilty. Siya's father, in fact, has been admitted to a hospital after the incident took place, and clearly because the family is now facing some serious allegations too. He added that his daughter shouldn't be spared either if proven. Let's listen in first to details coming in and the family's reaction.
5: मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
6: तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था?
5: कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था।
6: नहीं, क्या पहचानते हो चौधरी को?
5: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
7: हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
5: हाँ।
7: आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो?
6: आप माँ हो उसकी?
7: हाँ जी, अगर वो उसने ये
5: तो बोलता
7: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे? पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
6: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
7: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
6: जी,
5: और मैंने
7: केतन के साथ बात चालू थी सिया की। हाँ, हाँ। वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
0: From Pune, now moving to Punjab, the alleged sacrilege controversy, including Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, is escalating. Fresh claims, counterclaims are adding new twists to the controversy. There's an alleged video of Bhagwant Mann that is circulating on the internet. It's created uproar after Bhagwant Mann dismissed earlier claims stating it was an AI-generated video. After that, Punjab Chief Minister released a video alleging that a Canada-based individual is using hyper-realistic face mask to resemble him, and that is an alleged video of Mann, and that's not a real video. Mann himself is saying it's a fake video. But the difference in the two videos can also be seen clearly. The earlier video, allegedly of Bhagwant Mann, shows him in boxers. It's an AI version, which was shown by Mann himself in a press conference, claiming that it is all artificial intelligence generated. There's another difference that shows, for example, the difference in the two videos on your screen shows a TV in front of Mann. The AI video shows Bhagwant Mann standing between two beds. So Bhagwant Mann is using the video on the left side of your screen to show how AI is being used to generate videos. So differences can be seen. The question is, does it really absolve Bhagwant Mann from the claims against him? There's one Jagman Samra, who had shared the viral sacrilege video rejecting Mann's allegations outright, challenged Mann to produce evidence to back his assertions. India Today also conducted a ground probe into one of the facilities linked to the forensic report that was cited in support of Bhagwant Mann's defense. Our team visited the address associated with the examination of forensics there in Delhi. This is Janakpuri. Found no forensic laboratory that was operating at the site. There was no visible forensic infrastructure or evidence of any forensic analysis being conducted there. Staff present at the location also stated no report connected to the Bhagwant Mann controversy was prepared from the premises.
8: इस पूरे मामले में जिस साइबर लैब का नाम सामने आया, उस साइबर लैब में हम मौजूद हैं, यानी साइबर यान ये तिलक नगर में है, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ये पता लगा कि अरुण और अंकित, जिन दो आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, उनका साइबर यान से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ हमने उनकी फोटो भी दिखाई, क्योंकि जो गिरफ्तार दोनों लोग हैं, जब दोनों आरोपी हैं, ये अंकित है, इसे पुलिस ने पकड़ा। ये कभी देखा?
9: नो सर।
8: ये कभी काम किया है यहाँ?
9: नो सर।
8: ठीक है, अब ये देखिए अरुण है, अरुण कभी आया है?
9: इनको भी नहीं देखा सर, कभी
8: कभी नहीं देखा
9: जी।
8: तो ये लोग इन्हें कभी पहचानते नहीं, कभी देखे नहीं? गुड़गांव पुलिस आई थी?
9: नो सर।
8: गुड़गांव पुलिस भी नहीं आई थी? कहीं की कोई पुलिस
9: नहीं? नहीं, यहाँ अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन,
8: कोई जांच के लिए कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, यहाँ जो ये आपका पूरा सेंटर है, यहाँ पर कोई लैब है जिसमें फॉरेंसिक तरीके से आप जांच कर सकें कि सीडी नकली है असली है?
9: ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर।
8: तो करते क्या है आप लोग?
9: सर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, साइबर सिक्योरिटी कोर्स से रिलेटेड।
8: साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग कराते हैं, कोई लैब?
9: नो नो नो सर।
8: बच्चे कितने बड़े होते हैं जिनको ट्रेनिंग देते हैं?
9: 10th pass 12th pass BA BTech।
8: अच्छा, मतलब कोई भी?
9: हाँ, कोई भी।
8: एक बार दिखाएंगे आप, क्या नाम है आपका?
9: नितिन सर।
8: नितिन, आप यहाँ पे क्या करते हैं?
9: सर, मैं ऑफिस बॉय हूँ।
8: अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि साइबर यान में दरअसल यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ बच्चे ही बैठे हैं जो स्टूडेंट हैं, कोई लैब जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, और बहुत बड़ा लग नहीं रहा है। ये भी छोटा सा एक लैब है, अंदर जाने की जरूरत नहीं, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, वो कुछ बच्चे हैं, हम देखते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये भी लैब उसी तरीके से ही है, मतलब क्लासरूम है यहाँ पर, बेसिकली ये पूरा क्लासरूम है। और अगर इधर हम आगे की तरफ जाते हैं तो बस ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं। तो कुल ये सिर्फ इतने ही एरिया में है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे?
9: स्टाफ में है 13-14%।
8: 13-14 लोग ही काम करते हैं, जिसमें क्लासरूम्स हैं, लैब आप उनको कहिए, लेकिन कोई फॉरेंसिक लैब या सीडी को प्रमाणित करना कि ये सीडी सही है गलत है, ये यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पुलिस नहीं आई, और अरुण और अंकित यहाँ पर काम नहीं करते थे, ऐसा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है।
10: कल परसों जी इन्होंने नवा एक सप कढ़िया मास्क वाला, ना मेरे कोले कदे किसी ने सीएम दा मास्क लियांदा जी, ना मेनू जे किसी नूं मैं पेमेंट कीती होवे, मेनू डिलीवर करके गया। ओ जे ओ डिलीवर करके गया भाई, ओनू कहे आ जा सामने आके दस दे वी इहदे पवाया सीगा जी, इहने एक्ट कीता सी ते मैं डिलीवर करके गया सी, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ 10 lakh ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ।
11: ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਕਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
0: ਅਸੀਮ ਬਸੀ ਜੁਆਇਨਸ ਮੀ ਫੋਰ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਔਨ ਦਿਸ। ਅਸੀਮ, ਟੈਲ ਮੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਹੈਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਕੋਰਡ ਅ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਬਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੇਨ ਸਮ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰ ਹਿਮਸੈਲਫ?
12: Well, as far as the reaction is concerned, yesterday we all know that Bhagwant Mann did a big press conference and said it was a mask. A mask was used by an imposter to basically defame him and religiously defame him on that front. But the opposition and the SGPC are not buying the theory of Chief Minister Bhagwant Singh Mann. The SGPC has said that Chief Secretary Kulwant Singh Mannan has said that if it was a mask, then what was the need to go to Gurugram and get it forensically tested? What was the need to pay 10 lakhs in Haryana and get it tested? It would have come in forensic report itself that it is a mask. So he said that the man's statements is carrying no logic. Yes, because Haryana police has made a big expose that the forensic report was stage managed, was tailored, and the forensic labs also were non-existent. So it's a big embarrassment for the Punjab government also, although they are putting it on BJP, that BJP manufactured it, all this. But now, the mass theory is concerned. Bhagwant Mann basically focused on a video which he showed yesterday that a mask was used. But the issue is that is not the video in question. The video in question by Akal Takht Sahib is different. The Akal Takht Sahib has given a direction regarding some other video in which a man is allegedly moving in a room and sprinkling liquor on a photograph.
0: Yes. Or
12: it is told to be of gurus.
0: Yes.
12: And doing other acts as well. But the video which Bhagwant Mann has shown is something different. He claims it's a mask. Hmm. So the opposition is not buying the theory, but Bhagwant Mann is.
0: But Asim, tell me this quickly. Why did Bhagwant Mann shared this new video? What was his intention? Quickly.
12: I think there was a lot of heat which government was facing, a lot of heat that Bhagwant Mann was facing as far as the religious quarters as well as the political quarters. So I think they found something that a mask was used. So this is the reason they did a press conference saying that a mask was used to set a narrative that the video which is in question is also made
0: also
12: by mask.
0: Also fake. Okay. All right. Very interesting. Thank you very much for now, Naseem Bassi. And remember, in the times of AI, it can be sometimes difficult to differentiate the original from the fake. But this time, because it concerns the Chief Minister himself, it's becoming a huge controversy. Did he indulge in an act that can be termed sacrilege when it comes to Punjab sentiments? On that note, I'm heading to a very short break. Stay tuned. News and updates on the other side.
13: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
14: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
15: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
16: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
17: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
18: Now and get 500 rupees off with the code COLLEGE2026.

0: साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: वीडियो बजाना बंद करो।
1: तो फिर क्या बजाएं?
2: हम ही लोग चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर।
3: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
4: Mirzapur the movie aims to translate the franchise's signature blend of violence, political intrigue and morally complex characters into a full-scale theatrical experience.
5: But is baar gaddi se nahi uthe.
4: More than just a spin-off, the film represents a significant milestone not only for Mirzapur but for Indian streaming properties, making the leap from OTT platforms to cinema halls.
6: भैया नमक तो ठीक डाले थे, कम लग रहा है क्या?
7: हम कब बोले कि खाने में डालना।

0: a 340-foot fall, once believed to be an accident. Maharashtra police say a meticulously planned murder, and now the investigation has zeroed in on one crucial question. Why was Chetan Chaudhary's internet switched off for nearly 11 hours? Investigators believe the answer could lie in the digital footprint. According to the Pune Rural Police, on the morning of June 18, Chetan allegedly left his own mobile phone behind with his employee and carried another phone to Lohagarh Fort. Police claim the borrowed phone travelled to the crime scene, while Chetan's own handset showed almost no internet activity. From 7 a.m. till 5:40 p.m., mobile internet remained switched off. Only incoming calls were received. Investigators suspect the phone swap wasn't random, but an attempt to hide movement, conceal location, and erase the digital trail. Police have now reconstructed the entire crime scene once again. Forensic experts revisited the cliff, examining whether Ketan slipped or was forcefully pushed. Their findings, investigators say, strengthen the murder theory. Just hours before Ketan's death, Sia and Chetan met at a cafe, where the final conspiracy was allegedly planned. The next morning, the trio reached Lohagarh, and according to investigators, the plan was executed. The victim's family is demanding the harshest punishment. Ketan's father met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, seeking a fast-track trial.
1: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
2: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
1: जी, मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए।
0: Maharashtra Chief Minister Fadnavis called the case deeply shocking.
3: मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये पण एकूणच ही घटना अत्यंत धोकादायक आहे.
0: A son is gone. A family wants justice. Police say the digital trail tells the story. Now the court will decide whether that trail leads to conviction. With Omkar Wable, Bureau Report, India Today.
4: Let me take this back to my colleague Omkar Wable, who continues to be with us on the broadcast. Omkar, a lot of versions that are coming in. For example, a report that suggests that CI also went on to say that she tried hinting to Ketan that she may not want to marry him. She may be with somebody else, but Ketan said she will not be able to get out of this marriage. Another version that is coming in of how Sia's family has revealed that Ketan allegedly wore a hair patch, to which Ketan's father has also responded, saying that even if they had a problem with that, what was the need of killing their son? What are these versions coming in?
5: Well, now investigation is underway and statements are being recorded. So, since the beginning, Chetan Chaudhary and Sia, they both were giving some contradictory statements. And later on, Ketan was the first guy who confessed everything that he was there. But then he said he climbed the fort, but he was not present at the spot from where Sia Goel pushed Ketan Agrawal to the gorge. But the interesting thing is later on, again, Sia accepted the crime. Sia, she told police officers, and it's written in her statement, that she initiated the things. She didn't want to get married to Ketan Agrawal, and that is why she was giving different kind of excuses, quote-unquote excuses, that he was using a hair patch and she was not ready. Again, in her statement reflects that. She told him again and again, she told Ketan Agrawal that she is not ready for her marriage, but still he was not ready to listen, and that is why she came to the conclusion. Then the whole story brewed in a Lulanagar's cafe, and then she executed this brutal crime and murder at Lohagarh Fort with the help of Chetan Chaudhary.
4: All right, Omkar, at the moment we leave it at that. I want to thank you and Divyesh for getting us the latest. Of course, we continue to track every development coming in on this story. We'll be right back. And we cut across to more breaking news coming in. More lapses that have emerged in the Ram Mandir donation scam. New revelations from the SIT report that claim non-compliance with the SOP established between SBI and the trust regarding the counting of offerings. According to sources, the SIT report mentions that Tinu possessed the keys to the donation boxes without any authorized order. The SIT report notes that this SOP was subsequently not followed during the process of counting the offerings. Now, according to this report, the investigation has classified this as an act of deliberate negligence. That is what the SIT report has revealed. Remember, the investigation continues and all the CCTV footage is being checked. Not just that, of the personal offerings that have been found in the accounts of the accused, 8 arrests that have already been made, but further lapses that continue to emerge as part of the Ram Mandir donation scam, where revelations in the SIT report that clearly claimed that there was non-compliance with the SOP that had been established between SBI, the bank, and the trust regarding the counting of offerings. Ashish is joining me on the broadcast with further details of what the report suggests. Ashish, SIT report ke mutabik, ek non-compliance jo ki establish kiya gaya hai, jo SOP inhone decide kiya tha bank aur trust ke beech mein, usse follow hi nahi kiya gaya.
6: Bilkul, dekhiye, sabse badi khabar hai, kyunki jo SBI trust ke saath mein milkar pure daan पात्रों के दान पात्रों से और दान से जुड़ी हुई चीजों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था इनका एसओपी, उस पर ही आगे बढ़ती है. लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग, या ट्रस्ट में कह सकते हैं फिर चाहे वो अनिल मिश्रा हो या इनके अलावा एसबीआई के जो कर्मचारी जिनकी नाम सामने आ रहा है, वो उन्होंने मिलकर इस एसओपी का पालन नहीं किया. एसआईटी ने इस बात का खुलासा किया है अपने ही रिकॉर्ड में और साफ कहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में होना चाहिए था, क्योंकि टिन्नू के पास ही पूरी चाबियां रहती थी और एसआईटी ने इस ट्रस्ट को पहले ही चोरी का अंदेशा था. तो 2024 और 2025 में ट्रस्ट और बैंक के बीच बैठक में एक एसओपी बनी थी. इस एसओपी में साफ किया गया था कि स्टेट बैंक की तरफ से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्र को हस्ताक्षर किए गए थे. गणना प्रक्रिया में आगे की एसओपी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया. एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो एसओपी बैठकर ट्रस्ट और बैंक के बीच में बनी थी, उस एसओपी पर काम ही नहीं हुआ. यानी कि जो एसबीआई के कर्मचारी हैं उनको लेकर और साथ ही साथ जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं उनको लेकर इससे किसी भी प्रकार का कोई भी एसओपी का जब पालन ही नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से दान जो चोरी के मामले चल रहे थे उसको लेकर भी ये अगर स्टैंडर्ड जो होता है स्टैंडर्ड ये अगर पालन होता तो शायद इतनी बड़ी चंदा चोरी वाली जो कथित बात आ रही है वो नहीं होती. तो कहीं ना कहीं जो एसओपी बनाई गई अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा के बीच में, उस एसओपी का पालन नहीं हुआ और उसकी वजह से ही जो लूप होल आए और लापरवाहियां सामने आई, जिसकी वजह से जो और वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे उसको इसका सीधा बेनिफिट मिला, फायदा मिला और उसी के तहत उन्होंने इस चंदा या ट्रस्ट चोरी से चंदा चोरी करने की हिमायत शुरू कर दी. और कहीं ना कहीं इसी वजह से जब एसओपी का पालन ही नहीं रहा, जबकि वो एसओपी एसबीआई और उसके बीच में साइंड हुई थी, उस एसओपी का अगर पालन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब ये ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट ने क्यों राम मंदिर के मामले पर उस एसओपी का पालन नहीं किया है, जो अपने आप में ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है.
4: बिल्कुल आशीष, फिलहाल शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए. Moving on, a festival of faith now at the center of a major controversy. In Madhya Pradesh's Ujjain, a Mohurrim procession that has sparked outrage after a van was suspended by a crane and blown up before a cheering crowd, with videos of the spectacle going viral on social media. Police has arrested 3 people on charges including arson. Ravish Pal getting us this report.
7: A van with suspended about 40 feet in the air by a crane, two men standing on top waving red flags. A few moments later, kaboom. The van blows up amid loud a cheer. It may appear to be a scene from a movie, but it was part of a Mohurrim procession in Madhya Pradesh's Ujjain. The video of the van with Le Fir Aage written on it has gone viral on social media, raising serious concerns over safety. What was termed as a mock blast took place on Tuesday night in the presence of a large crowd. The act drew strong criticism.
8: जो विस्फोट करके वहां पर लोगों के मन में दहशत पैदा करने का कोशिश की है, महाकाल की धरती पर शांति की उपासना जिस धरती पर पूजा पद्धति होती हो, वहां इस तरह का जुलूस निकालकर आपको विस्फोट करने की क्या जरूरत है? मुहर्रम के जुलूस पर तो पाबंदी नहीं है ना। अगर आपकी ईर्ष्या और आक्रोश है तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, भारत के खिलाफ तो नहीं है ना। तो इजराइल जाओ, अमेरिका जाओ, वहां बम विस्फोट करो, वहां जाकर लड़ो मरो।
7: मध्य प्रदेश पुलिस बुक्ड 4 पीपल, द 2 youths वेविंग फ्लैग एटॉप द वैन, the organizer of the procession and the crane owner. 3 of them, Shoaib, Zahid and Taslim Khan, were immediately arrested. The accused were paraded by the police through the same area where they staged the dangerous stunt in a display of misplaced heroism that could have ended in tragedy. Fortunately, it did not. Meanwhile, in Bihar's Shivhar, violent clashes broke out after 2 groups came face to face. The clashes and subsequent stone pelting left several people injured. However, apart from a few isolated incidents, Muharram was observed peacefully, especially in Uttar Pradesh, which had witnessed violence during Muharram in the past.
9: आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी।
7: इन द नेशनल कैपिटल स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर मुहर्रम।
10: कितनी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है इस पूरे प्रोसेशन को सेफली निकालने के लिए? यहाँ
11: हमारी तैयारी के 2 आयाम हैं, एक तो फोर्स डिप्लॉयमेंट है, दूसरा कम्युनिटी एंगेजमेंट है। कम्युनिटी एंगेजमेंट हम लोग हफ्ते भर से पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने पब्लिक के साथ मीटिंग भी की है, सरकार की गाइडलाइंस बताई गई है, उनसे डिस्कस किया गया क्या रूट्स वगैरह लेंगे, तो उसी हिसाब से वहां पे सारा अरेंजमेंट हमने लगाया है। अब रही बात फोर्स डिप्लॉयमेंट की, फोर्स डिप्लॉयमेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई जगह पे ताजिए होंगे। सदरवाड़ा हिंदुराव का मेन है, उसके अलावा सराय रोहिला है, कश्मीरी गेट है और बुराड़ी के इलाके के अंदर भी ताजिए रहेंगे।
7: Muharram has witnessed incidents of violence in the past being observed peacefully under massive security deployment. With Ravi Pal Singh and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
4: Cutting across to my colleague Ravish Pal Singh, who is now joining us live on the broadcast. Ravish, ये मामला बहुत serious हो सकता था, लोगों की जाने भी जा सकती थी, जिस तरह से उस वैन को क्रेन पर लटकाया गया और उसको ब्लास्ट कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 accused को बुक किया है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है?
12: देखिए, 4 accused को बुक किया गया है और इनमें से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 3 accused जो है जो प्राइम अक्यूज्ड माने जा रहे हैं, जो 2 वैन के ऊपर खड़े थे और एक जो कॉन्स्पिरेटर है, जो स्टंट को जिसने पूरा परफॉर्म करवाया था, जो प्लानर बताया जा रहा है शोएब, ये 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। और जो लोकल पब्लिक है उसके बीच में इनका डर बना रहे तो इनका जुलूस भी निकाला गया, इनका प्रोसेशन निकाला गया उस इलाके में जहाँ इन्होंने ये स्टंट किया था। ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस जगह पर ये ब्लास्ट डिस्प्ले इन लोगों ने किया था एज ए स्टंट मुहर्रम प्रोसेशन में, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, 500-600 लोग थे, और शुरुआत में इनको लग रहा था कि ये दरअसल बड़नगर में 2 अलग-अलग एरियाज की एक पुरानी राइवलरी चलती है मुहर्रम प्रोसेशन में, तो ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे को अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। तो उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ये स्टंट बड़नगर में किया गया था एक ग्रुप की तरफ से। जब इसके वीडियो वायरल हुए तब इसकी इंटेंसिटी का, जब इन्होंने स्टंट किया तब इनको शायद ये मालूम नहीं था, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुए तब पता चला लोगों को कि ये कितना गंभीर हो सकता था। इसलिए सीरियस हो सकता था क्योंकि लोग थे वहाँ पे, भगदड़ मच सकती थी, ब्लास्ट के बाद जो मेटल और ग्लास के पीसेस है वो पब्लिक पे गिर सकते थे, आग जो वहाँ पे थी वो पब्लिक के ऊपर आ सकती थी, और भीड़ में अगर भगदड़ मचती तो वहाँ पे नुकसान हो सकता था, लोगों को जान माल के नुकसान हो सकता था। इसलिए पुलिस ने सिर्फ इनको अरेस्ट नहीं किया बल्कि बकायदा अभी से कुछ देर पहले इंडिया टुडे ने जिस तरीके से इस इश्यू को उठाया सुबह से, पुलिस ने ये अश्योर किया है कि इन लोगों के ऊपर NSA भी लगाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। यानी सिर्फ एक FIR और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फॉरेंसिक टीम ने भी इस जगह पे जाकर के, स्पॉट पे जाकर के वहां से जो एविडेंस है उसे कलेक्ट किए हैं और इस घटना को सिर्फ एक स्टंट के तौर पे नहीं बल्कि एक हीनियस क्राइम के तौर पर फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस देख रही है।
4: जी रवीश, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एंड शिफ्टिंग अवर फोकस नाउ टू न्यूज दैट हैज कम इन फ्रॉम नागपुर इन महाराष्ट्र। अ रूटीन वैक्सीनेशन, अ फादर अकॉम्पनिंग हिज टीनेज डॉटर एंड विद इन मिनट्स a medical emergency that left a family grieving and officials searching for answers. This happened in Nashik, where the death of a 17-year-old girl shortly after she received a routine tetanus diphtheria vaccine that has prompted a detailed medical investigation. Authorities are urging people not to draw any conclusions until all scientific and forensic reports are fully available. So here's what we know so far. Now, according to the Nashik Municipal Corporation, the teenager visited a routine vaccination camp with her father. At 12:40 p.m., she received the TD vaccine, which is part of India's regular immunization program. After leaving the vaccination center, she reportedly felt dizzy. While on her way home, she collapsed on the road. She was immediately taken to a nearby hospital, but unfortunately declared dead on arrival. Now, the exact cause of the death, that has still not been established. Police have completed an inquest and a post-mortem examination. The vaccine sample that has been sent for laboratory analysis. Officials are also awaiting the Vicera report. Investigators say that they are examining all possible medical explanations. Now, these include whether there was an adverse event following the immunization, whether the fall itself could have caused a fatal head injury, or whether there was an underlying medical condition unrelated to the vaccination at all. At this stage, officials say that no single cause that has been confirmed so far. Meanwhile, the health department that has appealed for calm and has urged the public not to rely on speculation or unverified claims circulating online. According to the Nashik Municipal Corporation, the same vaccine stock that has already been used extensively, 24 vials were supplied to the health center and 12 have already been used. Now, officials say that around 120 people had received doses from this very stock. The same vial that was used for a teenager and was also administered to six others. That included four pregnant women, another teenager and a child. Now, according to the administration, none of these recipients who have reported any adverse effects so far. Health officials are saying that these details are an important part of the ongoing inquiry and will help determine whether there is any issue linked to the vaccine itself. The administration has also clarified that the vaccine administered was the routine tetanus and diphtheria vaccine, not any other vaccine being referred to in misleading social media posts. The TD vaccine that protects against tetanus and diphtheria is routinely given to children at the ages of 10 and 16 and is also recommended during pregnancy. It is administered safely to lakhs of people across India every year as part of the universal immunization program. Officials describe it as a well-established vaccine with a strong safety record, while emphasizing that every serious medical event following vaccination is investigated thoroughly regardless of the suspected cause. For one family, this is an irreplaceable loss. For the authorities, it is a sensitive investigation that now rests on medical evidence, forensic analysis and scientific review. Until those reports are complete, officials maintain that the cause of the teenager's death remains under investigation.
13: कल तकरीबन एक बजे के आसपास हम गवर्नमेंट का प्लस लेने गए थे। उधर लस लेके आए तो एक 50-50 फुट का अंतर होगा, उधर मेडिकल में गई मेरी बहन और वो लस का डोज इतना ज़्यादा था क्या उनकी तरफ से क्या गलती हुई अभी सामने नहीं आई है, तो वो उसको चक्कर आ गए डायरेक्टली, वो उसको बहुत बड़ा झटका लगा और उसने उधर अपना बॉडी ये कर दिया, छोड़ दिया था। तब हमने हॉस्पिटल को हिलाया, सब हॉस्पिटल में मतलब ले रहे ही नहीं थे, तो उन्होंने बोला सिविल को जाओ। सिविल को जाने के बाद 1:30 बजे के आसपास उन्होंने मेरे को बता दिया कि डेथ हो गई है। इसके पहले 2 घटनाएं ऐसी हो गई है इस महीने में, अभी ये 3री घटना है, तो हमको इसका सिर्फ न्याय चाहिए।
14: काल दुपारी श्रावणी अनिल पाटील नावाची 117 वर्षाची होती, इंजेक्शन TD घेण्यासाठी एका आमच्या लसीकरण केंद्रावरती आली होती। ही प्रतिबंधात्मक लस आहे, ही लस आम्ही 10 वर्षाच्या मुलामुलींना, 16 वर्षाच्या मुलामुलींना आणि गरोदर मातेला देत असतो। जवळपास या आपल्या पुणे नाशिक शहरामध्ये दरवर्षी साधारण 30,000 गरोदर माता, तेवढीच 16 वर्षाची मुलामुली आणि तेवढीच 10 वर्षाची मुलामुली यांना ही लस दिली जाते। ही लस अतिशय सुरक्षित आहे, परंतु 10 लाखांमध्ये 1 ते 2 जणांना या लसीचा त्रास होऊ शकतो। परंतु ह्या श्रावणी अनिल पाटील हिचा मृत्यू झालेला आहे याचा आमची सविस्तर चौकशी सुरू आहे, त्याच्यामध्ये पंचनामाचा पोलिसांचा अहवाल, त्याचप्रमाणे पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट, या सर्व लसीचे नमुने आणि ते विसराचे नमुने, याचा जेव्हा अंतिम आमच्या निष्कर्ष येतील त्यावेळेस आपल्याला ह्या अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येऊ शकेल।
4: That is time for us to slip into a very short commercial break. Coming up on the other side, Apple has hiked prices across its Mac and iPad lineup in India. Why are gadgets suddenly getting costlier? We're getting you all the details after this short break. Please stay tuned.
15: You're watching India Today Television. India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.
16: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
17: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
18: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
19: After multiple assassination attempts, they can't even get...
20: They're reliable.
21: Always when I need them.
18: ...to live sports action.
22: One-hand jam by LeBron on the break.
23: That's another three, Steph Curry.
18: And your favorite music.
24: Well, the dawn begins to crack.
18: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
25: World War.
26: There's immense pressure on India when it comes to oil. How can both countries handle this Western pressure and sanctions?
27: How vulnerable do you think Europe is today?
28: Jair Bolsonaro being put behind bars, is that something that will be a problem when you meet President Trump?
29: Truth shaped by questions, not by passports. India Today Global.

अगर गुड़ी डालना है तो उसे अच्छा चीनी डाल लीजिए. बट हेलो, ब्रेकिंग न्यूज, शुगर इज पॉइजन, ये बात आपको पता है. लेकिन अगर शुगर खानी ही है, कौन सी शुगर लीस्ट हार्मफुल होती है? इन दिस वीडियो वी आर कंपेयरिंग व्हाइट शुगर विद ब्राउन शुगर, ऑल्सो गुड़ विद हनी. Let's get started. So first, that both white and brown sugar come from sugarcane. It's 100% sucrose, highly processed, zero nutrients. Cut to brown sugar. देखिए ये चीनी ही है. But during the processing period, the sugarcane juice produces a very thick, dark byproduct called molasses. That gives this sugar the brown color. Commercially, brown sugar is just white sugar जिसमें molasses बढ़ा दिया गया है. Glycemic index की अगर बात करें तो दोनों का same होता है, around 65. तो verdict क्या है? Nutritionally दोनों identical है. Brown sugar is not healthy. It is just more expensive. अब हम आपको बताते हैं जो non-processed sugar की category होती है, जैसे jaggery. Jaggery भी sugarcane से ही आता है. Remember molasses जिसने brown sugar को color दिया था, वही molasses इसके अंदर होता है. But 100 grams में करीब 380 calories है, ऑलमोस्ट सेम एज शुगर. और जीआई इंडेक्स, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो चीनी से, ब्रेकिंग न्यूज, ज्यादा होता है गुड़ का. तो अगर आप गुड़ अपनी चाय में डाल रहे हैं, तो गुड़ी डालना है तो उससे अच्छा चीनी डाल लीजिए, कम ही इम्पैक्ट होगा जीआई पर. मॉडरेशन में अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं. पर अब बात करते हैं उसकी जो बहुत नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर माना जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट हनी. इट्स नेचुरल, यस, बट योर बॉडी प्रोसेसेस इट लाइक शुगर. हनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अराउंड 58 होता है. मार्जिनल डिफरेंस है शुगर से. और उसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, थोड़े बायो एक्टिव्स होते हैं. बट इतना याद रखिए कि एक्सेस हनी आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हनी के बारे में ये है कि हनी के जितने भी गुण हैं, कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है जैसे ही आप उसे किसी गर्म चीज में डालेंगे. पर अब बात करते हैं कि इतना सारा शुगर खाने का आपका ग्लूकोज बढ़ाने के अलावा आपकी पॉकेट पर कितना खर्चा आता है. व्हाइट शुगर आपको जैसे पता है अबाउट 60-100 रुपीज पर केजी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी ले रहे हैं. ब्राउन शुगर जो है दैट्स अबाउट 100-170 रुपीज पर केजी. जैगरी जो होता है 150-200 तक जाता है. एंड जो हनी है पॉपुलर ब्रांड्स हैं उसके हिसाब से वेरी करता है, पर करीब 500-600 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है. तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए जो हेल्दीएस्ट मूव है दैट इज नॉट बाय स्विचिंग शुगर. द ट्रिक इज टू कट डाउन द क्वांटिटी ऑफ शुगर. और एक और इंपॉर्टेंट बात, एडल्ट्स को WHO के मुताबिक अबाउट 25 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर लेना चाहिए एक दिन में. ये 25 ग्राम्स कितना होता है आपको पता है? अबाउट 6 टीस्पून्स. ऐसी बहुत सारी शुगर है जो आपको पता भी नहीं चलता है, जो आपकी ब्रेड में, आपकी भुजिया में, आपके बिस्किट्स में है. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें. और अगर आप डायबिटिक हैं तो कोई भी शुगर स्विच करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें.

0: है और वो बहुत बहुत बड़े अच्छे विद्वान लोगों का ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी भक्ति पर, उनके समर्पण पर और उनकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, बट ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो उन करोड़ों लोगों को भरोसा है,
1: पर ट्रस्ट पे क्यों नहीं सवाल है? ट्रस्ट पे भी
0: आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट कि उनकी निष्ठा पे हम अभी कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, बट उस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए और इस करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, एक दो नहीं पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसकी जांच कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होगा कि साहब जांच बैठाई किसने, जांच की किसने और जांच की किसकी, तो उसमें जो निष्पक्षता का जो मैसेज है वो नहीं जाएगा। और राम मंदिर का मसला जो है पूजा जी, राम मंदिर का वो विषय है कि वो भगवान राम जिन्होंने एक सवाल खड़ा करने पर अपनी प्रिय जानकी को भी अग्नि परीक्षा देना स्वीकार कर लिया था, तो उस भगवान के मंदिर में यदि लूट हुई है, चोरी हुई है, तो एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं, आखिर कौन
1: वो
0: है?
1: नेक्सस ही तो समझना है।
0: तो ये पाप है, ये पाप है, और मैं मानता हूं कि इस पाप का खुलासा होना बहुत जरूरी।
1: आचार्य जी, वर्ल्ड ओवर वी आर बीइंग वॉच्ड राइट नाउ बिकॉज़ इट वाज सच अ बिग न्यूज, रिमेंबर व्हेन द टेंपल वाज इनॉग्रेटेड, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देयर वर डोनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। यू डोंट वांट द वर्ल्ड टू थिंक दैट देयर कुड हैव बीन मिसहैंडलिंग ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंडिंग लाइक दैट, एंड दीज आर चार्जेस राइट नाउ, आई रिटरेट, दीज आर चार्जेस राइट नाउ एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। स्वामी चक्रपाणि महाराज जी, आप नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के, क्या आप खुश हैं इस बात से? आर यू कन्विंस्ड दैट चंपत राय, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हैज रिजाइंड, अनिल मिश्रा हैज रिजाइंड, इज दैट गुड इनफ फॉर यू राइट नाउ? क्या आपको लगता है और भी इसमें कुछ होना चाहिए?
2: नहीं, देखिए, रिजाइन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यह तो बीच की बातें हैं कि रिजाइन दे दो ताकि वहां की जो पवित्रता है, वहां की जो शुचिता है वो बनी रहे और निष्पक्षता से जांच हो। रिजाइन मूल उद्देश्य नहीं है, और मात्र किसी के आरोप लगने से भी हम ये नहीं कह देते तुम चोर हो, वो तो जांच होगी। तो मूल विषय ये है कि आखिर इस ट्रस्ट के रहते हुए भी इस तरह से ऐसी अनियमितता कैसे हुई कि मात्र 45 दिन में सैकड़ों, उसमें बता रहे थे कि उसमें वीडियो ऐसे आए हैं जो चोरी के सबूत मिले, उसके पहले वाले तो कट गए हैं। आप जरा बताइए, इनको थोड़ा भी जो चोरी करने वाले थे क्या इतने दुस्साहसी थे? जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भगवा दारी है योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं शक्ति के रूप में एक सख्त मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो राम भक्त हैं, जब से वो आए हैं अयोध्या जी में कितना विकास हुआ है, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जाते हैं तो दंडवत करते हैं राम जी के सामने, हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और वहां पे ये इतनी बड़ी घोटाले हो रहे थे, इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, और पूरे हिंदू समाज जो पूरे देश और विश्व के राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीना से वो दे करके मंदिर बनवाया कि एक भव्य मंदिर, एक राम राज्य की स्थापना होगी मंदिर के ऊपर। आपको याद होगा स्थापना पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक संबोधन हुआ था, और उन्होंने एक नए युग की कल्पना की थी, नए राम राज्य की कल्पना की थी। आज वहां पे चोरी की कभी कोई सोच नहीं सकता, साधारण भक्त नहीं सोच सकता। तो कहीं ना कहीं उन सभी जो परम उद्देश्य थे उसको पलीता लगाने का काम किया है।
1: महंत नवल किशोर दास जी महाराज इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, ही इज फ्रॉम द अखाड़ा परिषद। आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि कम से कम रिजाइन किया, 8 लोगों को तो पकड़ लिया गया है, कोर्ट ले जाया गया उनको, वो जेल भेजे जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो एक्शन लिया गया, क्या आप मानते हैं ये अभी काफी है और कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या और आपकी मांगे हैं?
3: हमको पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी राम भक्ति में, उनके समर्पण में किसी को भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग 8 लोग अरेस्ट हुए हैं तो प्यादे हैं, किसके निर्देशन में वो काम कर रहे थे, इतना हिम्मत उनका कैसे हो गया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में वहां चोरी जैसा महा पकड़ने का दुस्साहस कैसे इनने कर लिया, और हमारे इतने अच्छी दृष्टि वाले लोग जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया, तो व्यक्ति के चेहरे को देख करके चरित्र से पहचान लेते हैं, उन लोगों को क्यों समझ में नहीं आया कि उनको नीचे काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। फिर एक ही कड़ी क्यों तोड़ी गई, जोड़ी गई, एक व्यक्ति वही त्रस्का से है, उसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि भक्ति हो रही थी, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि प्रबंधन हो रहा था। लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है ही, इसलिए पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए सिरे से सृजन किया जाए, और नए सिरे से भी हम चाहेंगे कि उसमें संतों ने गांव गांव नगर नगर जाकर के राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए, चाहे रामशिला पूजन हो, राम ज्योति हो, गंगा पूजा हो, भारत माता की यात्रा हो, संत यात्रा हो, महात्माओं ने संतों ने अपने मठ मंदिर छोड़ करके जागरण किया था, आज कहीं न कहीं पूरे जागरण को, पूरे परिश्रम को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। पूरा हिंदू समाज कहीं न कहीं व्यथित है, परेशान है। आज साधु समाज कहीं न कहीं अपने को ऐसा है कि हमने किसके लिए किया था, क्यों किया था। इसलिए उस ट्रस्ट में अच्छे संतों की जो समर्पित भाव से काम करते हैं उनकी सहभागिता हो, उनके दिशा।
1: अच्छा, आप चाहते हैं जो ट्रस्ट है उसमें भी संत समाज से इंक्लूजन रहे, और महंत सीताराम दास जी, आप स्पोक्स पर्सन है निर्मोही अखाड़ा का, हाँ, और निर्मोही अखाड़ा का तो रोल काफी मशहूर रहा है, चाहे वो मूवमेंट हो या मंदिर के हिसाब से भी, लेकिन इसमें जब बात आती है जिस तरह का ये चार्ज आ रहा है, और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, तो अभी डिटेल्स ये भी नहीं हमें पता है कि कितने डोनेशन, कितने अमाउंट पे ये इश्यू आ रहा है, तो जब आप सुनते हैं कि कम से कम एकदम एक्शन लिया गया है, पहला सेंटिमेंट क्या है? क्या ये हिंदू आस्था पे अटैक है, या हिंदू आस्था के नाम पे जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिनमें इतनी भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि वो राम मंदिर में बैठकर ये महापाप कर रहे हैं, उनको किस तरह की पनिशमेंट मिली जाए, हिंदू आस्था पर किस तरह का ये अटैक है?
3: देखिए पूजा जी, एक आपने जो शुरुआत की है मैं उससे प्रारंभ करूंगा। आपने कहा कि निर्मोही अखाड़े का रोल बहुत बड़ा रहा है, तो 23 मार्च 1528 को जब मीरबाकी आया था तो वहां पर निर्मोही अखाड़ा ही था, और उसके बाद में 1866 में जब हमारे महंत खेमदास जी महाराज ने मुकदमा किया और मुकदमा जीते, उसके बाद में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। 1885 में हमारे महंत रघुवर दास जी महाराज ने मुकदमा किया, और 1949 में जब रामलला वहां पर प्रकट किए गए ऐसा कहते हैं, तो वहां पर 1949 में रामलला प्रकट नहीं किए, 1941 रामलला तो पहले से बैठे हुए थे, 1941 से निर्मोही अखाड़ा वहां पर सेवा पूजा पहले से ही कर रहा था, और उसके बाद में 1959 में पहला पक्षकार बन करके निर्मोही अखाड़ा गया।
1: नहीं, आप मुझे बताइए, क्या आप, क्या अभी जो एक्शन लिया जा रहा है उससे आप कन्विंस रहे हैं? आपको लगता है करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ये बिट्रेल है?
3: ये एक्शन नहीं है, ये दिखावा है और ये एक षड्यंत्र है, ये एक्शन नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक्शन करना होता तो मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि भरत तिवारी जो बिहार में बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जजमेंट के गोली मार दी गई, और जो व्यक्ति अभी कह रहे थे प्रमोद कृष्णन जी कि खुलासा होना चाहिए, खुलासा तो हो चुका है, अब तो इनको सजा मिलने की जरूरत है। SIT,
1: आचार्य जी, आप मानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, क्या आई वॉश है? क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता था जो आई वॉश नहीं हो? जी जी, हाँ, आप चाह रहे गिरफ्तार करना चाहिए किसको? कड़ा तो है, गिरफ्तारी तो हुई है 8 लोगों की,
3: कड़ी सजा, और ये जो अभी गिरफ्तारी भई है ये दिखावा है, वही चोर, वही वही FIR करने वाले, वही गिरफ्तार करने वाले, वही चोरी करने वाले, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। देश देख रहा है, राष्ट्र देख रहा है, राम भक्त देख रहे हैं, ये चलेगा नहीं।
1: आचार्य जी बताइए, और किस, और ये आप क्यों ये जो है इसको आप काउंटर कर रहे हैं, कि मतलब किस तरह से इसको देखेंगे आप?
0: और देखिए पूजा जी, बात ये है कि एक चोरी एक दिन में हो जाए तब तो समझ में आती है, लेकिन निरंतर वो लूट हो रही थी निरंतर, तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। और कोई भी, ये जो 8 पकड़े गए हैं तो अब ये बताएंगे कि और कौन कौन है।
1: हाँ।
0: तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अभी 8 की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे किसकी गिरफ्तारी होगी वो ये बताएंगे, क्योंकि पहली बात है चोरी करना, दूसरा है चोरी कराना, तीसरी बात है चोरी हो रही है लेकिन हम देखते रहे, तो तीनों जो बातें हैं इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का, जो लोग अपनी नेक कमाई में से वहां पैसा जिन्होंने दिया है उनके दिल पे कुठाराघात हुआ है, वो सब के सब दुखी हैं, हर घर में इसकी चर्चा है। मगर क्योंकि ट्रस्ट की जो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करना उचित नहीं होगा और पूरे के पूरे ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखना होगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए
1: कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या ये ट्रस्ट की बात है पूरी? अब आप बताइए नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर दास जी, आप बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो राम भक्तों की श्रद्धा का दोहन हुआ है, इसमें एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। और जब तक एक एक अपराधी दंड का भागी नहीं बनता, कठोर दंड नहीं मिलता, तब तक राम भक्तों को प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो समर्पण करता है, एक रुपए भी समर्पण करता है, उसको लगता है कि भगवान की सेवा में मेरा दिया हुआ निधि जाएगी, उस निधि को व्यक्तिगत उपयोग करना या उससे चोरी करना इतना बड़ा अपराध। राम राज्य में, राम मंदिर में, राम
1: महान सीताराम जी जो आप कह रहे हैं, जैसे जी आप कह रहे हैं कम से कम 8 लोग हुए हैं, वही तो आगे बताएंगे। अगर शुरुआत ही नहीं होगी,
3: चोरी की है,
1: जो शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे कैसे बता देगा?
4: ऐसा ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा नहीं है। जो मुख्य आरोपी हैं पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: पहले कौन है मुख्य आरोपी आपके हिसाब से, कौन है मुख्य आरोपी?
3: गिरफ्तार करना चाहिए, और वो भी SIT गिरफ्तार करती, जो वहाँ की जो पुलिस है जो अभी गिरफ्तार किया है और जिन्होंने FIR कराई है, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने ही FIR कराई है और ट्रस्ट के लोग ही चोरी कर रहे हैं, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है। क्योंकि गिरफ्तार करने वाली संस्था SIT होती यदि, तो हमें भी लगता कि हाँ कुछ कार्य हो रहा है।
1: चक्रपाणी महाराज जी आप क्या कहेंगे? यहाँ तो चंपत राय की गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या आप भी अग्री करते हैं उससे?
2: देखिए, मूल विषय गिरफ्तारी उद्देश्य नहीं, मूल विषय ये चोरों का पर्दाफाश होना जरूरी है। और कोई भी हो, जितने हो सकता है और लोग भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये ना तो सबके वो होना चाहिए, सबको सजा मिले। लेकिन एक बात है कि जिस प्रकार से चोरों ने समझा, भगवान राम के शरण में रह करके सीसी कैमरे हटा दिया जैसे सुनने में आया, और मात्र 45 दिन का उसमें सैकड़ों बार उसमें वीडियो आया चोरी करते हुए, लेकिन ये भूल गए कि ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं, उनके सीसी कैमरा हमेशा चालू होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा कुछ सोचते भी हो गलत वो भी लिखा जाता है। उनके यहाँ सजा तो मिलनी ही मिलनी है, अगर यहाँ तुम किसी तरह से यहाँ भी नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ योगी जी और मोदी जी हैं, उन तो सजा जरूर दिलवाएंगे, और ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज है, और निश्चित रूप से वो छोड़ने वाले नहीं है, सजा तो होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कलंक देने का काम किया है, जो हिंदुओं को एक घाव देने का काम किया है, वो हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा।
1: और आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए।
0: देखिए देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे सीताराम जी महाराज और नवल किशोर दास जी को मैं सुन रहा हूं, हम किसी भी निर्दोष को सूली पे चढ़ाने के पक्ष में नहीं, पूरे के पूरे ट्रस्ट को हम ये कहें कि ये ही बेईमान है, चोर है, ये मैं नहीं कहना, मैं ये नहीं चाहता हूं।
1: तो अगला ट्रस्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो चाहे वो संत समाज से हो, क्या वहां प्रॉब्लम नहीं हो सकती?
0: ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। मेरा कहना ये है कि पहले तो ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। फिर जांच के अंदर जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि ये लोग बताएंगे कि क्या इनको संरक्षण कौन देता था, तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे और हम इनको जेल भेज देते हैं, ठीक है, तो फिर जांच आगे बढ़ेगी कैसे? हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए या उन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ये अपराध को संरक्षण दिया।
1: अगर मैं सही थी, महंत सीताराम जी आप ही कह रहे थे कि चंपत राय को अरेस्ट होना चाहिए।
3: अरे आचार्य जी कैसी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एसआईटी में प्रमोद कृष्णम जी ही बैठे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है, ऐसी प्रक्रिया समझा रहे हो। क्यों, उसका कारण है आचार्य जी, आपका दोष नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो आप खुल करके वो बात नहीं कह सकते ना, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, समस्या ये है, इसलिए
0: प्लीज ऐसी बातें मत करिए जो जिनका आपको पता नहीं है। पहली बात मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, सुनिए पहले बात एक मिनट सीताराम दास जी प्लीज बहन जी मेरी बात सुनिए, पहली बात भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, नंबर एक।
1: आप
0: ठीक है, आई एम सॉरी टू से मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप एक सेकंड, आप अपने किसी व्यक्तिगत दुराग्रह की वजह से पूरे के पूरे ट्रस्ट को बेईमान ठहराए, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, आप अपनी बात करिएगा, मैंने अपनी बात करी है, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा देना चाहिए, मैंने साफ बात की, तो मैंने तो कोई पार्शियलिटी की बात नहीं की, मैंने किसी के पक्ष में बात नहीं की। अब आप किसी भी दुराग्रह से ग्रस्त होकर के मुझ पर हमला करें कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ जो हुआ है उसकी तह तक जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवाद पार्टी, ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय हो सकता है।
4: नहीं चंपत राय भैया, प्रमोद कृष्णम जी, आप दरवाजे से घुसोगे दीवार फांदोगे, दरवाजा चंपत राय भाई।
0: आप ये कह रहे हैं मैंने उसका विरोध कहां किया? सीताराम दास जी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने का, आप कह सकते हैं कि ये अपराधी है ये नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं जो सरकम चांसेस हैं, जो सरकम चांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है।
4: आचार्य जी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सारी चीजें सामने आ चुकी, खुलासा क्या आप बार बार आप लोग कह रहे हो खुलासा होना चाहिए, खुलासा
0: अगर आपको मालूम है कि सारी चीज सामने आ चुकी हैं, तो आप बताइए कि चंपत राय जी को अरेस्ट करने के बाद में, चंपत राय जी को जेल भेजने के बाद में उनके साथ और कौन कौन थे वो भी नाम बता दीजिएगा।
4: हम तो बता रहे हैं ना, चंपत राय जी के साथ साथ में अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और उसके साथ में पूरा ट्रस्ट, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, आपने उनको तो गिरफ्तार किया नहीं,
0: छोटे
1: लेकिन कोई चार्ज तो आएगा ना, जब वो चार्ज कहां से आ रहा है, आप जिसके बारे में कह रहे हैं अरेस्ट होना चाहिए, सब अरेस्ट हो जाने चाहिए, कहीं तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं तो नाम आए, ऐसे ही तो किसी को उठा के जेल में नहीं डाल दिया जा सकता है ना।
4: पूजा जी, मैं पूछ रहा हूँ, भरत तिवारी का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, भरत तिवारी की को गोली मार दी गई, अब वो बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर चलावे ना इनके टिन्नू मिन्नू से सबके, चंपत राय और अनिल मिश्रा के प्रति इनके घरों में चलाए ना बुलडोजर।
0: नहीं सीताराम दास जी बड़े सम्मानित संत हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं
1: बुलडोजर वाली,
0: लेकिन मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह भरत तिवारी का एनकाउंटर है, मैं उस एनकाउंटर को एनकाउंटर नहीं मान रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि वो हत्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, बट वो एक अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस एक तो आप अपनी बात कह जाते सुनना नहीं चाहते, महंत जी सुना भी कीजिएगा, कोई क्या कह रहा सुन तो लीजिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप सुन तो लीजिएगा, आप सुनना नहीं चाहते, आप ये कहना चाहते हो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं इन्हें एनकाउंटर कर दिया जाए,
4: मैं नहीं बोलता,
0: आप ये कहना चाहते हो कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए,
4: बिल्कुल क्यों नहीं
1: नहीं, नहीं, नहीं देखिए स्वामी जी महंत जी, थोड़ा सा हम अपनी लहजे पे अपनी बात पे कंट्रोल करेंगे, हम ये ऐसे चीजें नहीं कहेंगे किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए, अभी वो चार्जेस आए नहीं है। महंत सीताराम जी आप निर्मोही अखाड़ा से हैं, हम ऐसे चार्जेस के बिना ऐसी बात नहीं कर सकते, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाएगा,
0: किसका है किसका नहीं है इसका
1: स्वामी चक्रपाणि महाराज जी आप हमें बताइए,
0: टीम करेगी,
1: यहाँ देखिए कैसे समाज में जो संत समाज है उसी में एक तरह से डिबेट शुरू हो गया है, तो किस तरह से आगे जाया जाए ताकि जो भी रहे हैं, जुड़े रहे हैं मंदिर से, आस्था से, किस तरह से आगे जाया जाए, क्या इसमें सीधा तौर पे ट्रस्ट पे ही मुद्दा आता है, सारे ट्रस्ट को रिजाइन कर देना चाहिए, पर अगला ट्रस्ट कैसे बनेगा वो भी तो फिर उसमें भी तो एक प्रोसीजर और प्रोटोकॉल देखना चाहिए।
2: नहीं देखिए, संत जो भी हैं सबके अंदर पीड़ा है, चाहे हमारे निर्मोही अखाड़े के हमारे पूजित संत हैं या हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, सब यही चाहता है कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिले। सवाल इस बात का है, आचार्य जी भी वही कह रहे हैं कि अगर जेल में ही तुरंत भेज दिया जाए तो भाई जांच किससे होगी, किससे जाके पूछा जाएगा, तो ये तो ठीक है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है इसमें जो सभी को जिस प्रकार से जो कष्ट हुआ है, जो किसी प्रकार से कहीं ना कहीं भावना आहत हुई है, कहीं ना कहीं लोगों की भावना को ठगा गया है, तो उस ठगने में निश्चित रूप से ट्रस्ट में जो है वो लोग जिम्मेदार हैं, और इसको कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए। आप सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ डिबेट से नहीं होगा, निश्चित रूप से इस पे हमें पूरा विश्वास है कि एजेंसी कार्य करेगी। और जैसे अभी देखिए ये पता ही नहीं चल रहा था कि FIR होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो टिन्नू मिन्नू जो भी नाम आ रहे हैं 6-7-8, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आकर के वो इतने हैसियत वाले थे कि बोरी में नोट लादा और निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं था। जरूर किसी के साथ होगा, जरूर किसी का साथ होगा, जरूर किसी ने उसको पीछे से वो किया होगा कि चिंता ना करो मैं हूं, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष है उनका बयान है स्पष्ट, उन्होंने कहा है कि कोई यहां व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसे आता था और जाता था, किसी प्रकार की कोई किसी की चेकिंग नहीं थी। तो जब इस तरह की बात वहां
1: और कैसे किसी टिन्नू यादव जैसे एसोसिएट को इतना फ्री एक्सेस था टेंपल कॉम्प्लेक्स में, वो कौन से बड़े ऑफिशियल थे जिनको उनके साथ कुछ और इतनी आसानी से कैसे नवल किशोर दास जी महाराज, आप अखाड़ा परिषद से हैं, मैं आपसे क्योंकि आप थोड़ी देर नहीं थे तो आखिरी कमेंट्स में, तो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता है कि कितने का जो हेरा फेरी मानी जा रही है वो हुई है, तो कैसे हिंदू समाज को और देश भर वर्ल्ड ओवर कैसे एक अश्योरेंस जाएगा कि जो भी अब इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से हो, सामने सामने हो, और मुख्यमंत्री ने क्योंकि ये आश्वासन दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा इस हिसाब से।
3: मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूँ भंग ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन प्रबंधन किसी अन्य लोगों को दिया जाए, और जब तक पूरी जांच ठीक से नहीं हो जाती वर्तमान ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस भूमिका से अलग रखा जाए, इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सकें और पूरा निर्णय हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब लोग पदेन रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पूरी जांच ठीक से हो पाएगी, इसलिए सभी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने आप को अलग कर लें और कुछ प्रबंधन में अन्य लोगों को जोड़ दिया जाए तत्कालीन, बाकी बाद में जो निर्णय करना हो करें, पर तत्कालीन कोई दूसरी व्यवस्था की जाए प्रबंधन में, और इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सके और पता लगे कि किनके संरक्षण में यह हो रहा था। मैं पूर्ण सहमत हूँ महाराज जी से, चक्रपाणी जी से, कि बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहमति, उनके बर्दस्त के बिना इतना बड़ा गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए वो कौन है, वो जांच होना चाहिए उसकी, और उसको जांच को उसे कान पकड़ करके जो भी उसको कठोर से दंड मिले, दंड मिल जाए, तो आम जो श्रद्धालु हैं अन्य राम भक्त उन्हें लगेगा कि जांच ठीक हुई और अपराधी को दंड मिल रहा है।
1: आप तो सबने अपनी बात रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए आस्था पे एक बने रहना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि अब आगे ऐसा ना हो, ये किस तरह से सरकार इंश्योर करेगी। एंड आई वांट टू थैंक ऑल द पैनलिस्ट्स, एंड दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, विल कंटिन्यू टू ट्रैक, बट राम मंदिर डोनेशन स्कैम और द एलिगेशंस अगेंस्ट इट इज सैडली नॉट एन आइसोलेटेड केस, वी हैव सीन अर्लियर इश्यूज ऑफ फेक घी और फेक सिल्क दुपट्टाज एट तिरुपति, सिल्वर ऑफरिंग्स एट वैष्णो देवी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ऑल्सो वेयर वैल्यूएबल्स वेंट मिसिंग, दीज आर सेक्रेट स्पेसेस, वी नीड टू एंश्योर दैट दे आर राइटियस पीपल हु आर गिवन द टॉप पोजिशंस हियर एज मच। आई वांट यू टू टेक अ लुक एट द स्पेशल रिपोर्ट एंड हाउ परहैप्स वी विल एंश्योर आवर सेक्रेट स्पेसेस रिमेन सेक्रेट।
5: Every temple begins with faith. A folded hand, a whispered prayer, an offering made with devotion with the belief that it reaches the divine. But what happens when that faith becomes someone's business and when devotion is exploited? The latest controversy, the Ram Mandir. Donations made in faith siphoned off. An SIT probe, an FIR naming 8 people, and now arrests have followed. But this is not the first time. Just weeks before the Ram Mandir row, Sabarimala's alleged gold loot had already sparked a national controversy. Gold plating missing in the Sanctum Sanctorum, sparking anger and shock among Ayyappa devotees. The Keralam High Court stepped in. SIT probe continues. Tirupati, not gold, not cash, but the sacred prasadam itself. Investigators allege adulterated ghee, made using palm oil and other substitutes, entered the laddu supply chain for nearly 5 years. nearly 68 lakh kilograms worth around 250 crore rupees. A CBI-led SIT has charge-sheeted 36 accused. The ED continues to investigate the money trail. And another Tirupati controversy. This time the temple Hundi. CCTV footage surfaced showing donation theft during counting. BJP leaders alleged over 100 crore rupees were siphoned from devotees' donations. The allegations are contested and the case remains under investigation. The question did not end there. The same script repeats at Vaishno Devi. Devotees offered silver as an expression of faith, but testing allegedly found the offerings contained just 5 to 6% silver, the rest cheaper metals. And even at the world's richest temple, at Sri Padmanabhan Swami Temple, questions were raised over missing valuables. Around 70-80 grams of gold, the sacred Vairanama ornament, the allegations that a gold ceremonial lamp had been replaced with a lower value substitute. Police flagged serious security lapses. The questions remain, who was responsible? Different temples, different states, same betrayal. Faith offered, trust stolen. The loss did not measured in crores, but in broken devotion. The question now, who will protect faith from those meant to protect it? Bureau Report, India Today.
6: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
10: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
11: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
12: Money, money, everyone.
13: Soch badlo aur bank bhi.
14: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
15: I promise to stick to the economic questions, but being a journalist, I have to ask you this. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote an open letter. Your first reactions are?
16: What's Iran's position on October 7th? Is the world really sleepwalking into another world war?
17: There's immense pressure on India when it comes to oil. How can both countries handle this Western pressure and sanctions?
18: How vulnerable do you think Europe is today?
19: Jair Bolsonaro being put behind bars, is that something that will be a problem when you meet President Trump?
20: Truth shaped by questions, not by passports. India Today Global.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: भाई तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: चंपतराय जी को इस व्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन चंपतराय जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बदले में हम ही को नौकरी से निकाल दिया। ये चढ़ावा चोरी का मामला जब आया था तो एक लेखा प्रभारी था जिसका इंटरव्यू हुआ था कोई महिपाल सिंह करके। महिपाल सिंह का भी यही स्टेटमेंट था कि 2021 में मैंने एक बार चढ़ावा चोरी पकड़ी थी, मैंने चंपत राय जी से शिकायत की। तो चंपत राय जी से शिकायत की तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने मिल करके हमको नौकरी से निकाल दिया। ये इसका भी इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में आज भी पड़ा है, अभी 15-20 दिन पहले का इंटरव्यू है उसका। तो इन सब बयानों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी अव्यवस्था से आंख मूंद लेना, कोई कमी अगर कहीं से कोई शिकायत आ रही है, शिकायतों पे आंख मूंद लेना भी एक प्रकार का नकारापन है।
1: आप अपनी चिट्ठी के बारे में बताइए, आपने ये चिट्ठी चंपत राय के रोल पर सवाल उठाते हुए कब लिखी थी?
0: मैंने दो पत्र लिखे थे। मैंने 9 जून को एक पत्र लिखा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके कि प्रधानमंत्री जी दैनिक जागरण समेत तमाम लोगों के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी हुई है। क्योंकि देखिए राम मंदिर बहुत सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जो है आस्था का मंदिर है, अगर वहां से चढ़ावा चोरी जैसी निकृष्ट घटना की सूचना जाएगी या खबरें आएंगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होंगी और इससे ज्यादा अपमानित करने वाली घटना हिंदू समाज के लिए हो नहीं सकती है। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इस प्रकरण की किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा लीजिए जिससे सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे मामलों को लगातार विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ उठाता है और उसका लाभ वो चुनाव में लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से अगर देखें तो मुझे लगा कि ये दोहरा नुकसान है, एक तो मेरे सनातन पे आघात है, दूसरा मेरी पार्टी पे नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी इसकी जांच करा ली जाए। तो उसके जांच के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित की, वो जांच चल रही है। दूसरा पत्र जब चढ़ावा चोरी में तमाम लोगों के बयान सामने आने लगे, किसी ने कहा मेरा हार गायब है, किसी ने कहा मेरी चांदी गायब है, किसी ने कहा मेरा सब गायब है, तब मैंने दूसरा पत्र लिखा कि आप समर्पण निधि और जमीन और जो भी दान आए वे सब कुछ आया है, ट्रस्ट को निर्देशित करिए कि ट्रस्ट इन चीजों को अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक कर दे जिससे जिसने जो दान दिया है उसकी चीज वहां मिल जाएगी तो उसके मन में शंका नहीं रहेगी। क्योंकि तो ऐसे तमाम लोगों के बयान आ रहे होंगे, आपने भी देखा होगा और दिखाया भी है कि कोई कह रहा मेरा हार गायब है, कोई कह रहा मेरी चांदी की ईंट गायब है, कोई कह रहा मेरा कुछ गायब है। तो ये अगर ट्रस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल देगा और लोग वहां पे देख लेंगे तो मुझे लगता है ये प्रश्न भी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ट्रस्ट इसकी जब जांच के लिए जिला प्रशासन ने ट्रस्ट के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कोई भी सूचना देने से मना कर दिया, बोले कि हमारे यहाँ SIT की जांच चल रही है और हम कोई सूचना नहीं देंगे।
1: अब FIR की चर्चा करते हैं। FIR के बाद 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये जो 8 लोग हैं इनमें कोई भी सीनियर मैनेजमेंट नहीं है, जो ट्रस्ट के ऊंचे पद पर बैठे हुए पदाधिकारी। आपको लगता है कि सीनियर मैनेजमेंट जिसमें अभी हमने देखा चंपत राय ने इस्तीफा दिया, उनकी जवाबदेही बनती है?
0: जवाबदेही तो देवन से तय होनी चाहिए। इन लोगों ने इस्तीफा देने में बहुत विलंब किया है और इस विलंब की वजह से काफी नुकसान हुआ है और सनातन पे गहरा आघात पहुंचा है। इन लोगों को पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। अब मुझे स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई का डर है, कार्रवाई के डर से इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर बता दे रहा हूँ कि इस्तीफा दे दें फिर भी बच नहीं पाएंगे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार निश्चित करेगी।
1: ऑल राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जॉइनिंग मी ऑन द शो नाउ इज अरविंद कुमार जैन, फॉर्मर DGP ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड कार्तिक चोपड़ा, स्पोक्स पर्सन ऑफ निर्मोही अखाड़ा। अरविंद कुमार जैन, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू फर्स्ट, यू नो, बिकॉज हियर इज चंपत राय हु हैज क्लेम्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज रिजाइन्ड। द SIT, what are the level of allegations against him is still not clear, but can he really say that he did not know what his driver and other 8 people were doing when he was the one running the trust? He was the one responsible for the day-to-day management of the functioning of this entire counting and collection and the entire process of the offerings of Ram Lalla.
2: No, he cannot claim it. He's himself responsible. So many people were briefing him regarding the embezzlement and other activities going on during counting.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: सीटी बजाना बंद करो।
1: तो फिर क्या बजाएं?
2: हम ही लोग चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर। हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
3: Mirzapur the movie aims to translate the franchise's signature blend of violence, political intrigue and morally complex characters into a full-scale theatrical experience. More than just a spin-off, the film represents a significant milestone not only for Mirzapur but for Indian streaming properties, making the leap from OTT platforms to cinema halls.
4: भैया नमक तो ठीक डाले थे, कम लग रहा है क्या?
5: हम कब बोले कि खाने में डालना।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: on him to resign, but he sees this as a conspiracy and that Champat Rai hasn't resigned so far. We shall wait for an official confirmation on this. But Sanju Verma, opposition says 8 employees being arrested is an eyewash, a cover-up to shield the higher-ups in the chain of command at the trust. Why have Champat Rai and Alok Mishra not been held accountable yet, madam?
1: You know, Gaurav, first things first, as a practicing Hindu, I'm completely pained at the revelations that have been coming out in the public domain over the last 72 odd hours. Because for us, Ram Mandir is not just about Aastha. It is about the civilizational battle that Hindus won after 500 long years. And so many people have sacrificed for this cause, including Mr. Champat Rai. I was listening to one of your discussions hosted by you, where you rightly said that Champat Rai has been called, Ram Lalla ke Patwari, because he used to maintain the books of accounts and the entire documentation in the run-up to that famous Ram Mandir verdict in 2019. Yes. Be that as it may, does the BJP stand for accountability and transparency on this issue? Taki doodh ka doodh aur paani ka paani ho jaye? Oh yes, that is point number one. Point number two, SIT report, the contents of that have not yet come out in the public domain. So my humble request is, let the contents of the SIT report be made public by the relevant authorities. Before that, to jump the gun and assume that Champat Rai or Anil Mishra are guilty, I think that is being unfair. I would have said this for anyone. Let's not try and guillotine people without having substantive proof. पॉइंट नंबर थ्री,
0: राम जी ने तो एक आंच भी नहीं थी और फिर भी उन्होंने ये कहा था कि एक मर्यादा होती है. एंड ही टुक सर्टन एक्शंस, राइट और रॉन्ग, ही टुक दोज एक्शंस एक धोबी के कहने पर. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ दैट, बट ऑल आई एम सेइंग इज लोग क्या कहते हैं, लोक मर्यादा कितनी बड़ी बात होती है, यू नो दैट वेल. बट लेट मी ब्रिंग इन अनुराग भदौरिया इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. अनुराग भदौरिया, चंपत राय के खिलाफ अभी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाए, उसके बाद कार्रवाई की जरूरत है तो कार्रवाई होगी. 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं. क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान के पता होना चाहिए कि दान पात्र में चोरी की बात तो समाजवादियों ने उठाई थी. भारतीय जनता पार्टी लगातार डिबेट में आई नहीं. आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दर्शन हो रहे हैं. जब हमने प्रभु राम के घर में चोरी की बात उठाई थी, उनके दान पात्र में चोरी की बात उठाई थी, तो इनको मेरे स्वर में स्वर मिलाना चाहिए था कि ये तो आस्था की बात थी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात थी. और जब वो आस्था की बात थी तो आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए? दूसरी बात, जिस तरह के वहां पे 8 लोगों के ऊपर FIR हुई है, उनको गिरफ्तार किया है, वो तो बहुत निचले लेवल के कर्मचारी हैं. लेकिन जिनके देखरेख में, चाहे चंपत राय जी हो, मिश्रा जी हो, इनके देखरेख में तो सारा काम चल रहा था, फिर ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं भाई? आप बताइए, चंपत राय जी का ड्राइवर यहाँ पे वो करोड़ों का मालिक हो गया, क्या चंपत राय जी को पता ही नहीं चला? फिर वो कैसे हो गया? तो सवाल उठता है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे तो आपको इंक्वायरी करने में भी दिक्कत होगी. उनको सबसे पहले अपना ही अपनी इच्छा अनुसार भाई, ये आस्था को देखते हुए, सनातनियों की भावनाओं को देखते हुए, विश्वास को जीतने के लिए उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था निष्पक्ष इंक्वायरी हो, मैं अपने पद पे नहीं रहूंगा जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाए, जब तक मैं हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा. लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया.
0: देना चाहती है संजू वर्मा आपको उत्तर देना चाहती है. 2 पहलू आपने उठाए, संजू गो अहेड.
1: यू नो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस मुद्दे पर नेशनल टीवी पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये बीजेपी तय करेगी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तय नहीं करेंगे.
2: नाम पे तो बोलूंगा
1: मैंने,
2: प्रभु के नाम पे तो बोलेंगे.
0: ओके सर, लेट मिस वर्मा कंप्लीट अ पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू. गो ऑन मैम.
1: अनुराग भदौरिया, मैंने आपको नहीं टोका, अभी अपनी बारी पक्का इंतजार करिए.
2: जय सियाराम, जय सियाराम,
1: जय श्री राम,
2: जय सियाराम.
1: प्लीज नाउ लेट मी स्पीक. गौरव, मुद्दे की बात यह है कि जो लोग आज राम भगवान की आस्था को लेकर बीजेपी पर उंगलियां उठा रहे हैं, बीजेपी पर लांछन लगा रहे हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जब इनके अलायंस पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इज इक्वल टू डेंगू, मलेरिया, रेबीज, कोविड, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था. अनुराग भदौरिया के मुंह में दही जम गया था जब मद्रास हाईकोर्ट के जज जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट पिटीशन फाइल की, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम है। और क्यों पिटीशन फाइल की? सिर्फ क्योंकि जी आर स्वामीनाथन ने कहा था कि दीपथून पर दीपम जलाना हिंदुओं का हक है,
0: अधिकार
1: इस
0: है।
1: बात को लेकर इतना पेट में दर्द हो गया। मरिकम टैगोर, प्रियंका वड्रा, राहुल गांधी, सब लोग पिटीशन पर सही किया है। हिंदू आस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ बैठकर ढकोसले बाजी मत करिए।
0: हाँ, ठीक हाँ, जल्दी से जवाब दीजिए। आई वुड ब्रिंग इन ब्रिजेश कलापा इनटू द डिस्कशन बट क्विकली 30 सेकंड में सर।
2: नहीं, संजू वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फ्यूचर में डीएमके के साथ कोई उनका गठबंधन नहीं होगा। डीएमके चूंकि राम विरोधी के बारे में बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चिमटे से भी नहीं छुएगी, ये आपने बोला है ना। चलिए हम देखते हैं, आप तो वो लोग हैं जो प्रभु के राम को यहाँ विस्की में लेके बात करने वाले पार्लियामेंट के अंदर में नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे कर लेते हैं। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप तो उन पार्टी के साथ मिलके सरकार बना के चला रहे हैं जो वहां जिस तरह के लोग कहते थे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है। निषाद जी ने कहा था कि नहीं कहा था उनके साथ? मेरा मुद्दा नहीं है संजू जी फटकारी, मेरा मुद्दा है प्रभु राम के मंदिर के दान पात चोरी हुई है,
0: उसे
2: वो
0: उसी
2: मेरा मुद्दा है।
0: उसमें मुझे उसी मुद्दे पर
2: क्यों बच रही है? उसमें संजू वर्मा क्यों नहीं बोलना चाह रही है? वो दुनिया की बातें करेंगी, वहाँ यहाँ पे चेन्नई पहुंच गई लेकिन अयोध्या तक नहीं पहुंच पा रही है कि अयोध्या में कैसे चोरी हो गई।
0: ओके, टाइम आउट, टाइम आउट।
1: आपके नेताओं ने उंगली उठाई है, इसलिए आप मुझे भाषण मत दीजिए।
0: I'll come back to this point. I want to quickly bring in Brijesh Kalappa into this conversation. Brijesh Kalappa, wear your legal hat along with your political hat for a moment, sir. The SIT found lapses in the terms of procedure. CCTV camera images caught some theft. 8 arrests have been made. But, you know, on the basis of irregularities that have been revealed so far, information that's in public domain so far, should the General Secretary of the Trust also have either been named or brought into the ambit of the probe, and should he have stepped down in case he hasn't stepped down so far, as Gopal Rao insists?
3: See, Gaurav, the first thing is that the very fact that there have been several temples in the country which have been operating in a very clean, neat and transparent manner makes it obvious that the safeguards which were required to be implemented have not been implemented. And why are they not implemented? The answer is obvious, because the organizers or the trust officials are used to cheating public funds for not just now, but since the year 1990 when the Ram Janmabhoomi movement began. Because the fact that, you know, these funds have today been misused, this opens up a larger question that what happened to the huge amount of funds which have been collected by the BJP, the RSS and its cohorts from 1990 onwards? Where, what has happened to all that money? Now, okay. Today is a gentleman, Mr. Champat Rai, who has the ability to sign checks worth 35,000 crore, and right under his nose is this massive thieving going on. And he appears to be, you know, completely unaware of it, or he is completely useless. So either whether he is useless or whether he is conniving with them, the point is that certainly he must go. You must remember.
0: He must go, you say. Just one moment.
3: Because I was involved with the Kerala election. I must point out that anybody who steals the money of the deity is bound to be thrown into the dustbin of history. This is what happened with the CPM in Kerala, and this is what is going to happen with the Narendra Modi government in Delhi and the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh.
0: Okay, so since you've named a political party and leaders, Sanju Verma wants to respond. Sri Venkateswaranji, I'm coming to you, but Sanju Verma, quickly, since a political party has and leaders have been named. Go on, ma'am.
1: You know, I'm appalled, but I'm certainly not surprised at the hypocrisy of the Congress party. Gaurav, Sri Ranganatha Swami temple at Tiruchirappalli is one of the biggest temples in Tamil Nadu. And so many reports have come out in vernacular media that, you know, when the Congress was in alliance with DMK, money was being stolen from the hundis of Sri Ranganatha Swami temple. Not once did I see the Congress asking for a probe. Then when you know, the Sabarimala gold theft was made public. Now it is very fine for Brijesh Kalappa to speak on it. Not once did Rahul Gandhi or Priyanka Vadra or Sonia Gandhi speak out against the Sabarimala gold theft. Why not? Today on national TV, you suddenly remember ki Padmanabhi Swami temple se sona churaya gaya tha. जब बोलने का वक्त था तब आपने चुप्पी क्यों साधी हुई थी, तब आपके मुंह में कहीं जम गया था, आज आप बड़ी बड़ी बातें डंके की चोट पर बीजेपी को नसीहत देते हैं. दिस इज कॉल्ड बीइंग हिपोक्रिटिकल. एंड माय लास्ट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड गौरव, इन 2007 देयर इज अ पिटीशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट.
2: चोरी करने वाले के साथ है या विरोध में?
1: प्रभु राम इज अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ हिंदू.
2: ओके प्रभु,
1: फाइल्ड बाय द
2: सवाल छोटा सा.
0: ओके fair enough. I want to quickly bring in Shubhrasta into this conversation. I'll come back to you, you know, because there are so many questions that need answers. Let me quickly bring in Shubhrasta.
3: Okay. Today's brief is that as far as the Bharatiya Janata Party is concerned, their main job in this entire debate and in debates hereafter will only be rhetorical and will only be a diversionary tactic. They don't want the truth to come out. So they
0: sir,
3: will do everything. Will
0: you and I, we the people of this country want the truth to come out. And truth has to come out, sir. Ram Droh cannot be permitted anytime.
2: नहीं नहीं, इनसे ये पूछिए, ये चंदा चंदा चोरी जो वहां पे दानपात्र में चोरी है उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है संजू वर्मा जी? समाजवादी के जो आवाज उठाई उसके साथ आप हैं कि नहीं है कि वहां पे दानपात्र में चोरी हुई है? बस इतना बता दीजिए, जो हमने आवाज उठाई मेरे साथ है या नहीं है? मेरे साथ
0: ओके संजू वर्मा, 30 सेकंड्स बिफोर आई ब्रिंग इन शुभ्रास्ता.
1: लेट मी रीइंफोर्स व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट. आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई बिलीव, यू नो, थैंक्स टू अकाउंटेबिलिटी व्हिच बीजेपी स्टैंड्स फॉर, वी आर पेन्ड बट वी आर हैप्पी दैट दिस एंटायर इशू हैज कम आउट इन द पब्लिक डोमेन. लेट द गिल्टी बी पनिश्ड, लेट देयर बी नो रूम फॉर एनी लीनियंसी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई डोंट नीड डिफरेंसिंग सनातन धर्म from hypocrites of Akhilesh Yadav's party.
2: Ab maine aapse jo pucha us sawal ka jawab nahi diya.
0: Fair enough. I want to quickly move forward and bring in Shubhrasta into this conversation, who's been very patiently listening to this entire conversation. And Shubhrasta, is the probe in the right direction, or is there merit in the opposition saying that it's only those 8 employees, that the chain of command, those who are responsible for acts of omission and commission, are they now being, you know, are they being shielded? Why haven't they been booked yet?
4: Gaurav, a toddler like Ram Lala had to fight his own case in court for five, and you know, it was justice done after 500 years. So patience is something that Ram has taught all of us, you know, as Hindus practicing or non-practicing. So I'm not going to go into the fact that what has happened is extremely unfortunate. We all know it is unfortunate. I don't think any one of us sitting here in the panel is going to justify, you know, what
0: it's
4: has happened.
0: Sin.
4: However,
0: Ram Droh.
4: Let me also, yes, I agree with you. It is Ram Droh. Let me also put it out at the outset that I, as a practicing and a political Hindu, will not allow Samajwadi Party or the Congress Party to take a moral high ground on this. Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav, none of them have even visited the temple. What locus standi do they have to tell us whose donations has, been misappropriated? This third point that I want to, talk about here is this, Gaurav. This is an opportunity to open up the whole conversation around freeing the temples. Yes, it is a huge setback to that movement because what has happened, via the trust needs to be not only investigated, but, you know, justice brought. But it also tells us that because government interference, if at all I were to, you know, parrot the line of the opposition, if it's the government which is involved and which is why, you know, there are these discrepancies, which is, you know, we need to all the more free the temples absolutely from this control. Last point, Gaurav. Same show, a couple of months ago, we debated Waqf Bill.
0: Yes.
4: It was a conversation about Muslim properties. Look at the Samajwadi Party and the Congress Party then and look at them now.
0: Okay.
4: The point,
0: I'll come on the Waqf.
4: It is a problem. It is a problem in a Hindu household. We will figure it out. course, people who have been responsible are at the moment not, you know, put in jail. It will happen eventually because
0: SIT. Okay, those who are responsible will be put in jail. You are accusing the Samajwadi Party and Congress of double standards. Anurag Bhadauria, आप इसका उत्तर देना चाहते हैं?
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. सुब्रास्ता जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू है. जब राम के घर में चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने. जब आस्था पे चोट पहुंची करोड़ों हिंदुओं की, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने. समाजवादी कभी प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते, ना वोट मांगते. प्रभु मेरे आस्था का विषय है, राजनीति विषय कभी नहीं हुए. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो प्रभु को कणकड़ में खोजते हैं. आप प्रभु को कणकड़ में नहीं खोजती है. मैं कह रहा हूँ, आपके घर के मंदिर में भी आप शांति से बैठिए और यहाँ पे ध्यान लगाइए और प्रभु को याद कीजिए, तो आपको प्रभु आपके घर के मंदिर में भी मिलेंगे.
0: अगर गरीब शुभ्रास्ता
2: प्रभु की, वो गरीब अपनी इस फोटो में भी अपने भगवान को खोज लेता है. और आप बैठ के यहाँ पे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि चोरी हुई है तो गलत है और समाजवादियों ने जो
0: सभी कह रहे हैं
2: अच्छा काम किया है.
0: सभी कह रहे चोरी गलत है. सभी कह रहे चोरी गलत है. हम तो चाहते दोषों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई.
4: आपका शो अंग्रेजी में था तो मैंने अंग्रेजी में वक्तव्य दिया था. मुझे नहीं पता था कि अनुराग भदौरिया जी को अंग्रेजी समझ नहीं आती. मैंने ये कतई नहीं कहा कि चोरी हुई है, सही किया था समझा दी है. अगर आप समझ नहीं आ रहा है,
0: शुभ्रास्ता जी उत्तर देंगे जी.
4: आपको अपने आपको आपको अपने अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी भाषाओं की.
2: अच्छा,
4: दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू है या नहीं मुझे नहीं पता. मैं पॉलिटिकल हिंदू हूँ. आप लोगों की गंदी राजनीति ने मुझे पॉलिटिकल बना दिया है. और
2: मैं पॉलिटिकल हिंदू नहीं हूँ.
0: ठीक,
2: ठीक.
0: आई वांट टू ब्रिंग इन श्री वेंकटेश्वर हिंदू, श्री
2: वेंकटेश्वर मैं राजनीति जरूर करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल हिंदू नहीं हूँ.
4: ठीक,
2: मैं
4: सिर्फ हिंदू हूँ
2: और प्रभु में आस्था रखता हूँ. जब राजनीति करूंगा तो विकास की राजनीति करूंगा.
4: मैं तो बिहार की भूमि
0: श्री वेंकटेश्वर जी, एट लो लेवल काउंटिंग स्टाफ हैव बीन अरेस्टेड. एफआईआर रेफर्स टू अदर्स, इट डज नॉट नेम एनी ऑफ द सीनियर ट्रस्ट फंक्शनरीज एंड ऑफिशियल्स. सर, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं. अगर मर्यादा की बात करें, इतनी बड़ी चोरी के बाद कैसे चंपत राय जी, कैसे और ट्रस्ट के अधिकारी बने रह सकते हैं? शुड दे नॉट स्टेप डाउन?
5: Exactly. Let us wait for, as Subrata said, let us wait for the SIT. SIT is investigating it and they have already made some moves. And let us be patient. See, I would like to look at it not from this political point of view. I would like to look at it from a dharmic point of view. This is like, as Sanju Varma said, this is a civilizational battle that we have won. And it's a very hard-won battle. So we don't want any of the Hindus to be, you know, hurt from this. So we want...
0: You tell me, as a Hindu, are you hurt or not? 500 years of civilizational battle that you fought and won, that everyone fought and won. For what? For these people to line their pockets?
5: I'm also really hurt. I'm also really hurt. To them, that is what I want. That is what every Hindu.
0: No, around.
5: See, everything is in habit of this particular investigation. Everything is going to be investigated. Every person who has, you know, made any mistake is going to be punished. Absolutely sure about that. And I don't want to get carried away by this, you know, Samajwadi parties and you know, Congress parties fake narratives. We know their intentions.
0: What makes you think Samajwadi Party or Congress Party is setting the narrative? Sir, every Hindu is hurt. How could something like this happen at the Divya Bhavya Ram Mandir? Sir, you saw the emotion, sir. I have personally covered this case from 2010, High Court verdict, 2019, Supreme Court verdict, 2021, when the Shilanyas was happening, Bhumi Pujan was happening, 2022, Pran Pratishtha. You know, I have seen people, when you go there, when the engineers were working there, when they went to Garbhgrah, they would take off their shoes and socks. They would walk bare feet because of their devotion. That devotion has been maligned, Sanju Varma. That maryada has really been hurt. You said, as a practicing Hindu, you are hurt. Ma'am, you've seen those CCTV, yes. CCTV images, the tampering, donation box keys were controlled by specific individuals, inadequate background checks done, relatives given that job of counting money and no supervision. Which company has accountants not supervised at multiple levels?
1: You know, Gaurav, that's a very pertinent question. So there are two aspects to it. You know, I have no qualms in saying, you know, whether you're a practicing Hindu or non-practicing Hindu, a political Hindu or a non-political Hindu, it does not matter. Even as a tax-paying, honest Indian citizen, you need to demand accountability on certain
0: Absolutely.
1: Issues. But the more important point, my only humble submission, this is not arrogance, this is simply being factual. Let the SIT's report come out in public domain. Was it sheer incompetence on the part of Champat Rai? Or was he involved in a larger conspiracy? Or was it neither incompetence nor any role in the larger conspiracy, but he was himself a victim of what transpired around him? Let's wait for the brass tacks to be out before guillotining somebody on national TV. That's my only submission. And I want to end by saying one thing. Do you remember your channel had done this story? In 2018-19, your story came out with, your channel, pardon me, came out with revelations about how madrasas in Bankura, Birbhum, Bardwan and Murshidabad under the erstwhile Mamata Banerjee regime had actually turned into mini bomb making factories. And everybody said, don't get madrasas into this. You're making the whole thing communal. You're giving it a communal spin. But what I'm glad is that when it comes to Hindu Aastha, the BJP government, you know, Yogi Adityanath has clearly said, kisi ko baksha nahi jayega. And harshest punishment will be accorded. I think therein lies the difference.
0: There is another aspect, madam. That of an alleged land scam. You heard Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party and Anurag Bhadauria. 2 crore ki bhoomi, aarop ye hai. 2 crore ki bhoomi, 20 crore. Ya 18 crore.
2: 9 crore ki 55 crore.
0: में बेची
2: तो ये दस्तावेज
0: क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्या सीबीआई मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए या कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच
1: तो गौरव जी
2: मैं आपसे गौरव जी पहले से बोल रहा हूँ संजय सिंह अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अभी से नहीं कितने साल हो गए चुनाव के पहले से जब ये जमीन खरीदी गई 2021 की बात है 22 की उन्होंने पेपर दिखाए तो उस समय भी हम लोगों ने बोला था तो क्या इतने दिनों में ये इंक्वायरी नहीं हो सकती थी क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि चोरी कैसे ये जो जमीन का घोटाला कैसे हुआ अभी जब मंदिर की चोरी की अब जब उसमें दान पात्र में चोरी किया बाद दोबारा से समाजवादी ने उठाई तब एसआईटी ने बोला वो अभी जमीन के पेपर लेके आइए ये जमीन के पेपर तो पहले भी मांग सकते थे ना जब ये उठाया गया था मुद्दा कि जो सस्ती जमीन महंगे में खरीदी जा रही है आज की बात तो है नहीं ये सालों की बात हो गई थी तो सवाल उठता है कि आप इसकी क्यों नहीं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी इंक्वायरी इसकी इंक्वायरी
0: पानी हो जाएगा सीबीआई प्रोब और अ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इन द लैंड एस्पेक्ट ऑफ दिस बिकॉज इनिशियली It was the same logic that was given that those who oppose Lord Ram are raising these questions. But now that these questions are being raised with documents, should they be probed, sir, in a court-monitored investigation?
3: See, I'd only like to say this much, that the moment you want to protect people, and I have been in government, I've been out of government, I've seen, you know, how things work, I've been a lawyer. I know that if you want to protect people, the first thing that a government will do is to have an SIT, and that SIT is going to name the lowliest of individuals and then put them behind bars and then close the story, right? And this is exactly the same thing that is happening in Uttar Pradesh. Point is this, that who has facilitated this massive loot? First. Second question, when Prime Minister Modi comes, does the Pran Pratishtha, does the inauguration, does every single thing, why is he keeping quiet? Is he not ashamed of the fact that such a huge amount of money has been stolen from under his nose? Second fact.
0: Okay.
3: Third point is
0: Sanju Verma wants to respond on your naming the Prime Minister.
3: Now, here is a trust, Gaurav. Sorry, just one more point.
0: Give him 30 seconds to complete his point.
3: Here
0: he's completing his point. I'm coming to you, man.
3: Registered. The Ram Janam, the Ram Temple Trust is registered. Can you imagine the RSS? The RSS is still unregistered. Can you imagine the kind of money that they are stealing away?
0: Sanju Verma wants to respond. Go ahead, ma'am.
1: Yes. First and foremost, I take strong objection to the kind of language used for Prime Minister Narendra Modi by the Congress spokesperson, but I expect nothing better from him because आखिरकार तो ये राहुल गांधी के दरबारी हैं, तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे. The apple does not fall far from the tree. But let me come to the moot point here. The moot point is an allegation about zameen ghotala in Ayodhya has been made. But I ask Gaurav to you. We've done so many debates on other issues also, revolving around criminality and usurping of land. There has to be a money trail that has to be established by the person who's making the allegation. There has to be a malafide intent that has to be established. Proceeds of crime need to be established. Sanjay Singh is himself out on bail in the Delhi liquor gate scam. Arvind Kejriwal khud Delhi liquor gate ke aropi hai aur ye BJP ko nasihat de rahe hain on corruption aur other.
2: The second.
1: I mean, hypocrisy of the Aam Aadmi Party is commendable indeed, and I say that
0: fair
1: with a pun.
0: Shubhrasta, Mahipal Singh. And that's a name we've been hearing for quite some time, had blown the lid of the scam, as it's being called, even earlier. So is there merit in the demand for a total overhaul and a total audit of donations from the time of Pran Pratishtha, whether it is cash donation, gold, silver and other jewels that were donated?
4: Yes, I think that's a fair demand. I don't have any issue with that demand. But let me also tell you that this whole conversation about, the probe not happening the way it should, as the opposition is trying to say, let me also put it out, put the record straight. Legally and procedurally, I think the government is absolutely right and has not faltered at any point in time. For an FIR to be registered, somebody from the trust had to come forward. Because nobody came forward, an FIR couldn't be registered. Now the point is that there was a time-bound limitation on SIT, and I think the SIT has been doing its duties, fulfilling it absolutely correctly. But Gaurav, again, I would come with the same rider. It is a problem that there's a problem that has happened. Hamari drishti mein ye paap bhi hai. Is wajah se main ye baat bahut zordar tarike se rekhankit kar rahi hoon. This fight is a Hindu fight. And I don't think Hindus like us will allow Samajwadi Party or the Congress Party to take a moral high ground. Those who have not even visited Ram Lala once.
0: Okay.
4: Those who haven't even donated a single paisa. What locus standi do these politicians have?
2: ये ऐसा ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एमपी एमएलए चोरी हो रहे हैं, जनता का विश्वास चोरी हो रहा है, नीट का पर्चा चोरी हो जाता है, प्रभु के दान पात्र में चोरी हो जा रही है,
4: जनता
2: का विश्वास चोरी हो रहा है.
4: भाई कहां का
2: नहीं हो रहा
4: है,
2: ये बता दो मुझे. क्या नहीं कहां का नहीं हो रहा है. और सबसे बड़ी बात है, हिंदू को हिंदू नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा. मैं हिंदू, आप पॉलिटिकल हिंदू, आप पहले बोल चुके
4: हैं.
2: हिंदू
4: पड़ेगी चले आएंगे. मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है. इस कितने लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राजनीति को बिल्कुल टिकाऊ तरीके से रखा है, मुझे जवाब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है.
0: ठीक, संजू वर्मा क्विकली.
4: आपको शर्म आनी चाहिए ये कहने में कि हमारे पॉलिटिशियंस बिक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने. शर्म आनी चाहिए थी आपको.
0: संजू वर्मा ओनली संजू वर्मा रिस्पॉन्ड मैम.
1: गौरव, वो जो हिंदी में कहावत है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. इवन दी कांग्रेस इकोसिस्टम, दी समाजवादी पार्टी इकोसिस्टम, राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव नो डीप विद इन कि इनको भगवान राम लल्ला की आस्था से कोई लेना देना नहीं है. दे आर पोलिटिसाइजिंग दी चंपत राय एंड अयोध्या राम टेम्पल इशू टू गेन पोलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश 2027 असेंबली इलेक्शंस. बट आई वांट टू टेल अनुराग भदौरिया, जब वाराणसी में 2012 में ब्लास्ट हुआ था इंडियन मुजाहिदीन,
2: बात हो रही है राम मंदिर की, वहां पे चोरी की, आप इधर उधर मुद्दे को भटकाने में लगे हैं. आप 2012 में चले गए, मैं तो बात कर रहा हूँ अभी जो प्रभु राम के यहाँ दान पात्र में चोरी, उस पे क्यों बोलने से डरते हैं आप? उस पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? जैसे उस पे बात आती है आप इधर उधर भागने लगते हैं. प्रभु राम के ये हमारे आस्था का विषय, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय, सनातनियों की बात है ये, आप उस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा.
0: इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू. We've been assured that action will be taken, is being taken. I want to thank all our guests for being a part of this, because this is not just a violation of the Bharat Nyaya Sahita. This truly is also Ramdro. If you can steal money, jewels, or even land that belongs to the devotees of Maryada Purushottam Shri Ram. We'll be tracking investigations in the story very closely. I want to thank all our guests. A quick break. Lots more coming up on the other side of these messages. Stay with us.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: Astha. It is about a civilizational battle that Hindus won after 500 long years. And so many people have sacrificed for this cause, including Mr. Champat Rai. I was listening to one of your discussions hosted by you, where you rightly said that Champat Rai has been called, Ram Lalla ke Patwari, because he used to maintain the books of accounts and the entire documentation in the run-up to that famous Ram Mandir verdict in 2019. Be that
1: Yes.
0: as it may, do I stand, does the BJP stand for accountability and transparency on this issue, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? Oh yes, that is point number one. Point number two, SIT report, the contents of that have not yet come out in the public domain. So my humble request is, let the contents of the SIT report be made public by the relevant authorities. Before that, to jump the gun and assume that Champat Rai or Anil Mishra are guilty, I think that is being unfair. I would have said this for anyone. Let's not
1: Okay.
0: try and guillotine people without having substantive proof. Point number three,
1: राम
0: if
1: जी ने तो
0: Champat Rai.
1: एक आंच भी नहीं थी और फिर भी उन्होंने ये कहा था कि एक मर्यादा होती है. एंड ही टुक सर्टन एक्शंस, राइट और रॉन्ग, ही टुक दोज एक्शंस एक धोबी के कहने पर. आई एम नॉट गेटिंग इन टू द मेरिट्स ऑफ दैट, बट ऑल आई एम सेइंग इज लोग क्या कहते हैं, लोक मर्यादा कितनी बड़ी बात होती है, यू नो दैट वेल. बट लेट मी ब्रिंग इन अनुराग भदौरिया इन टू दिस कॉन्वर्सेशन. अनुराग भदौरिया, चंपत राय के खिलाफ अभी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाए, उसके बाद कार्रवाई की जरूरत है तो कार्रवाई होगी. 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं. क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान के पता होना चाहिए कि दान पात्र में चोरी की बात तो समाजवादियों ने उठाई थी. भारतीय जनता पार्टी लगातार डिबेट में आई नहीं. आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दर्शन हो रहे हैं. जब हमने प्रभु राम के घर में चोरी की बात उठाई थी, उनके दान पात्र में चोरी की बात उठाई थी, तो इनको मेरे स्वर में स्वर मिलाना चाहिए था कि ये तो आस्था की बात थी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात थी. और जब वो आस्था की बात थी तो आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए? दूसरी बात, जिस तरह के वहां पे 8 लोगों के ऊपर FIR हुई है, उनको गिरफ्तार किया है, वो तो बहुत निचले लेवल के कर्मचारी हैं. लेकिन जिनके देख रेख में, चाहे चंपत राय जी हो, मिश्रा जी हो, इनके देख रेख में तो सारा काम चल रहा था, फिर ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं भाई? आप बताइए, चंपत राय जी का ड्राइवर यहाँ पे वो करोड़ों का मालिक हो गया, क्या चंपत राय जी को पता ही नहीं चला? फिर वो कैसे हो गया? तो सवाल उठता है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे तो आपको इंक्वायरी करने में भी दिक्कत होगी. उनको सबसे पहले अपना ही अपनी इच्छा अनुसार भाई, ये आस्था को देखते हुए, सनातनियों की भावनाओं को देखते हुए, विश्वास को जीतने के लिए उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था निष्पक्ष इंक्वायरी हो, मैं अपने पद पे नहीं रहूंगा जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाए, जब तक मैं हमारे हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा. लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया.
1: देना चाहती है संजू वर्मा आपको उत्तर देना चाहती है. दो पहलू आपने उठाए, संजू गो अहेड.
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस मुद्दे पर नेशनल टीवी पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये बीजेपी तय करेगी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तय
2: प्रभु
0: नहीं
2: के नाम
0: करेंगे.
2: पे तो बोलूंगा,
0: मैंने आपको
2: प्रभु के
0: नहीं
2: नाम पे
0: कहा.
2: तो बोलेंगे.
1: ओके सर, लेट लेट लेट मिस वर्मा कंप्लीट अ पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू. गो ऑन मैम.
0: अनुराग भदौरिया, मैंने आपको नहीं टोका, अभी अपनी बारी पक्का इंतजार करिए.
2: जय सिया राम, जय सिया राम,
0: जय श्री राम, जय श्री
2: जय
0: राम,
2: सिया राम.
0: प्लीज नाउ लेट मी स्पीक. गौरव, मुद्दे की बात यह है कि जो लोग आज राम भगवान की आस्था को लेकर बीजेपी पर उंगलियां उठा रहे हैं, बीजेपी पर लांछन लगा रहे हैं, यह वही समाजवादी पार्टी है जब इनके अलायंस पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इज इक्वल टू डेंगू, मलेरिया, रेबीज, कोविड, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था, अनुराग भदौरिया के मुंह में दही जम गया था, जब मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट पिटीशन फाइल की, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम है. और क्यों पिटीशन फाइल की? सिर्फ क्योंकि जीआर स्वामीनाथन ने कहा था कि दीपथून पर दीपम जलाना हिंदुओं का हक है,
1: अधिकार
0: इस
1: है.
0: बात को लेकर इतना पेट में दर्द हो गया. मरिकम टैगोर, प्रियंका वड्रा, राहुल गांधी, सब लोग पिटीशन पर साइन किया है. हिंदू आस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ बैठकर ढकोसले बाजी करिए.
1: ठीक जल्दी से जवाब दीजिए, आई ब्रिंग इन ब्रिजेश कलप्पा इनटू द डिस्कशन बट क्विकली 30 सेकंड विद सर।
2: नहीं, संजू वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फ्यूचर में डीएमके के साथ कोई उनका गठबंधन नहीं होगा। डीएमके चूंकि राम विरोधी के बारे में बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चिमटे से भी नहीं छुएगी, ये आपने बोला है ना। चलिए हम देखते हैं, आप तो वो लोग हैं जो प्रभु के राम को यहाँ विस्की में लेके बात करने वाले पार्लियामेंट के अंदर में, नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप तो उन पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना के चला रहे हैं जो वहां जिस तरह के लोग कहते थे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, निषाद जी ने कहा था कि नहीं कहा था, उनके साथ मेरा मुद्दा नहीं है संजू जी फटकारी, मेरा मुद्दा है प्रभु राम के मंदिर के दान पात चोरी हुई है, उसमें संजू वर्मा क्यों नहीं बोलना चाह रही है, वो दुनिया की बातें करेंगी, वहाँ यहाँ पे चेन्नई पहुंच गई लेकिन अयोध्या तक नहीं पहुंच पा रही है कि अयोध्या में कैसे चोरी हो गई।
1: ओके टाइम आउट, टाइम आउट।
0: आपके नेताओं ने बात उंगली उठाई है, इसलिए आप मुझे भाषण मत दीजिए,
2: भाषण नहीं आस्था की बात है।
1: टू दिस पॉइंट I'll come back to this point. I want to quickly bring in Brijesh Kalappa into this conversation. Brijesh Kalappa, wear your legal hat along with your political hat for a moment, sir. The SIT found lapses in the terms of procedure. CCTV camera images caught some theft. 8 arrests have been made. But, you know, on the basis of irregularities that have been revealed so far, information that's in public domain so far, should the General Secretary of the Trust also have either been named or brought into the ambit of the probe, and should he have stepped down in case he hasn't stepped down so far, as Gopal Rao insists?
3: See, Gaurav, the first thing is that the very fact that there have been several temples in the country which have been operating in a very clean, neat and transparent manner makes it obvious that the safeguards which were required to be implemented have not been implemented. And why are they not implemented? The answer is obvious, because the organizers or the trust officials are used to cheating public funds for not just now, but since the year 1990 when the Ram Janmabhoomi movement began. Because the fact that, you know, these funds have today been misused, this opens up a larger question that what happened to the huge amount of funds which have been collected by the BJP, the RSS and its cohorts from 1990 onwards? Where, what has happened to all that money? Now, okay, today is a gentleman, Mr. Champat Rai, who has the ability to sign checks worth 35,000 crore, and right under his nose is this massive thieving going on. And he appears to be, you know, completely unaware of it, or he is completely useless. So either whether he is useless or whether he is conniving with them, the point is that certainly he must go. You must remember,
1: he must go. You say
3: just one moment. Fair enough. Just one moment, because I was involved with the Kerala election. I must point out that anybody who steals the money of the deity is bound to be thrown into the dustbin of history. This is what happened with the CPM in Kerala, and this is what is going to happen with the Narendra Modi government in Delhi and the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh.
1: Okay, so since you've named a political party and leaders, Sanju Verma wants to respond. Sri Venkateshwaran ji, I'm coming to you, but Sanju Verma, quickly, since a political party has and leaders have been named. Go on, ma'am.
0: You know, I'm appalled, but I'm certainly not surprised at the hypocrisy of the Congress party. Gaurav, Sri Ranganatha Swami temple at Tiruchirappalli is one of the biggest temples in Tamil Nadu. And so many reports have come out in vernacular media that, you know, when the Congress was in alliance with DMK, money was being stolen from the hundis of Sri Ranganatha Swami temple. Not once did I see the Congress asking for a probe. Then when, you know, the Sabarimala gold theft was made public, now it is very fine for Brijesh Kalappa to speak on it. Not once did Rahul Gandhi or Priyanka Vadra or Sonia Gandhi speak out against the Sabarimala gold theft. Why not? Today on national TV, you suddenly remember ki Padmanabhi Swami temple se sona churaya gaya tha. Jab bolne ka waqt tha, tab aapne chuppi kyun saadhi hui thi? Tab aapke muh mein kahi jam gaya tha? Aaj aap badi badi baatein dankhe ki chot par BJP ko nasihat dete hain. This is called being hypocritical. And my last point.
1: Okay.
0: please understand, Gaurav, in 2007, there is a petition filed in the Supreme Court. Prabhu Ram is a figment of the imagination of Hindus.
1: Okay.
0: Prabhu.
1: I want to quickly bring in Shubhrasta into this conversation. I'll come back to you, because there are so many questions that need answers. Let me quickly bring in Shubhrasta.
3: Today's brief is that as far as the Bharatiya Janata Party is concerned, their main job in this entire debate and in debates hereafter will only be rhetorical and will only be a diversionary tactic. They don't want the truth to come out. So they
1: Sir,
3: will do everything. They will
1: you and I, we the people of this country want the truth to come out. And truth has to come out, Please sir. Ram Droh cannot be permitted anytime.
2: इनसे ये पूछिए ये चंदा चंदा चोरी जो वहां पे दान पात्र में चोरी है उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है संजू वर्मा जी समाजवादी के जो आवाज उठाई उसके साथ आप हैं कि नहीं है कि वहां पे दान पात्र में चोरी हुई है बस इतना बता दीजिए जो हमने आवाज उठाई मेरे साथ हैं या नहीं है मेरे साथ
1: ओके संजू वर्मा 30 सेकंड्स बिफोर आई ब्रिंग इन शुभ्रास्ता
0: लेट मी रीइंफोर्स व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई बिलीव Thanks to accountability, which BJP stands for, we are pained, but we are happy that this entire issue has come out in the public domain. Let the guilty be punished. Let there be no room for any leniency. But what I'm saying is, I don't need referencing Sanatan Dharma from hypocrites of Akhilesh Yadav's party.
2: अब मैंने आपसे जो पूछा उस सवाल का जवाब नहीं दिया.
1: Fair enough. I want to quickly move forward and bring in Shubhrasta into this conversation, who's been very patiently listening to this entire conversation. And Shubhrasta. Is the probe in the right direction or is there merit in the opposition saying that it's only those 8 employees, that the chain of command, those who are responsible for acts of omission and commission, are they now being, are they being shielded? Why haven't they been booked yet?
4: Gaurav, a toddler like Ram Lala had to fight his own case in court. It was justice done after 500 years. So patience is something that Ram has taught all of us, as Hindus practicing or non-practicing. So I'm not going to go into the fact that what has happened is extremely unfortunate. We all know it is unfortunate. I don't think any one of us sitting here in the panel is going to justify, what has happened.
1: Sin,
4: However,
1: Ram Droh.
4: Let me also, yes, I agree with you. It is Ram Droh. Let me also put it out at the outset that I, as a practicing and a political Hindu, will not allow Samajwadi Party or the Congress Party to take a moral high ground on this. Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav, none of them have even visited the temple. What locus standi do they have to tell us whose donations has, been misappropriated? This third point that I want to, talk about here is this, Gaurav. This is an opportunity to open up the whole conversation around freeing the temples. Yes, it is a huge setback to that movement because what has happened, via the trust needs to be not only investigated, but, justice brought. But it also tells us that because government interference, if at all I were to, parrot the line of the opposition, if it's the government which is involved and which is why, there are these discrepancies, which is, we need to all the more free the temples absolutely from this control. Last point, Gaurav. Same show, a couple of months ago, we debated Waqf Bill.
1: Yes.
4: It was a conversation about Muslim properties. Look at the Samajwadi Party and the Congress Party then and look at them now.
1: Okay.
4: The point
1: I'll come on the waqf.
4: It is a problem. It is a problem in a Hindu household. We will figure it. Of course, people who have been responsible are at the moment not put in jail. It will happen eventually because
1: those who are responsible will be put in jail. You're accusing the Samajwadi Party and Congress of double standards. Anurag Bhadauria, aap iska uttar dena chahte
2: hain? Bilkul, bilkul, bilkul. Shubhrasta ji ne bilkul sahi kaha hai ki Bharatiya Janata Party political Hindu hai. जब राम के घर में चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई समाजवादियों ने
1: जब आस्था पे चोट पहुंची करोड़ों हिंदुओं की आवाज किसने उठाई? समाजवादी कभी प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते ना वोट मांगते। प्रभु मेरे आस्था का विषय है, राजनीति विषय कभी नहीं हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम बोलोग हैं जो प्रभु को कणकण में खोजते हैं। आप प्रभु को कणकण में नहीं खोजती है। मैं कह रहा हूँ आपके घर के मंदिर में भी आप शांति से बैठिए और यहाँ पे ध्यान लगाइए और प्रभु को याद कीजिए तो आपको प्रभु आपके घर के मंदिर में भी मिलेंगे।
5: प्रभु
1: की वो गरीब अपनी इस फोटो में भी अपने भगवान को खोज लेता है और आप बैठ के यहाँ पे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि चोरी हुई है तो गलत है और समाजवादी ने जो सभी कह रहे हैं अच्छा काम किया है।
5: सभी कह रहे चोरी गलत है, सभी कह रहे चोरी गलत है, हम तो चाहते हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
4: आपका शो अंग्रेजी में था तो मैंने अंग्रेजी में वक्तव्य दिया था, मुझे नहीं पता था कि अनुराग भदौरिया जी को अंग्रेजी समझ नहीं आती। मैंने ये कतई नहीं कहा कि चोरी हुई है, सही किया तो समझा दी है। अगर आप अनुराग जी अनुराग जी शुभ्रास्ता जी उत्तर देंगे जी, आपको अपने आपको आपको अपने अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी भाषाओं की।
1: अच्छा,
4: दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं पॉलिटिकल हिंदू हूँ, आप लोगों की गंदी राजनीति ने मुझे पॉलिटिकल बना दिया है और
1: मैं राजनीति जरूर करता हूँ लेकिन पॉलिटिकल हिंदू नहीं हूँ। प्रभु में आस्था रखता हूँ, जब राजनीति कर लूंगा तो मैं विकास की राजनीति करूंगा।
4: मैं तो बिहार की भूमिका से
5: श्री वेंकटेश्वर जी, एट लो लेवल काउंटिंग स्टाफ हैव बीन अरेस्टेड, एफआईआर रेफर्स टू अदर्स, अदर्स, इट डज नॉट नेम एनी ऑफ द सीनियर ट्रस्ट फंक्शनरीज एंड ऑफिशियल्स। सर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, अगर मर्यादा की बात करें इतनी बड़ी चोरी के बाद कैसे चंपत राय जी कैसे और ट्रस्ट के अधिकारी बने रह सकते हैं? शुड दे नॉट स्टेप डाउन?
6: Exactly. Let us wait for, as Subrata said, let us wait for the SIT. SIT is investigating it and they have already made some moves. And let us be patient. See, I mean, I would like to look at it not from just political point of view. I would like to look at it from a dharmic point of view. This is like, as Sanju Varma said, this is a civilizational battle that we have won. And it's a very hard-won battle. So we don't want any of the Hindus to be, hurt from this. So we want...
5: You tell me, as a Hindu, are you hurt or not? 500 years of civilizational battle that you fought and won, that everyone fought and won. For what? For these people to line their pockets?
6: I'm also really hurt. I want the culprits to be booked and exemplary punishment to be handed out to them. That is what I want. That is what every Hindu wants.
5: No, only Tinnu Yadav. Only Tinnu Yadav.
6: Let me just finish.
5: Who Tinnu Yadav was driving around?
6: See, everything is in habit of this particular investigation. Everything is going to be investigated. Every person who has, made any mistake is going to be punished. Absolutely sure about that. And I don't want to get carried away by this, Samajwadi parties and, Congress parties' fake narratives. We know their intentions.
5: Sir,
6: their intentions.
5: What makes you think Samajwadi party or Congress party is setting the narrative? Sir, every Hindu is hurt. How could something like this happen at the Divya Bhavya Ram Mandir? Sir, you saw the emotion, sir. I have personally covered this case from 2010, High Court verdict, 2019, Supreme Court verdict, 2021, when the Shilanyas was happening, Bhumi Pujan was happening, 2022, Pran Pratishtha. You know, I have seen people, when you go there, when the engineers were working there, when they went to Garbhgrah, they would take off their shoes and socks. They would walk bare feet because of their devotion. That devotion has been maligned, Sanju Varma. That maryada has really been hurt. You said, as a practicing Hindu, you are hurt. Ma'am, you've seen those CCTV CCTV images, that tampering, donation box keys were controlled by specific individuals, inadequate background checks done, relatives given that job of counting money and no supervision. Which company has accountants not supervised at multiple levels?
0: You know, Gaurav, that's a very pertinent question. So there are two aspects to it. I have no qualms in saying, whether you're a practicing Hindu, a non-practicing Hindu, a political Hindu or a non-political Hindu, it does not matter. Even as a tax-paying, honest Indian citizen, you need to demand accountability on certain
5: issues.
0: But the more important point, my only humble submission, this is not arrogance, this is simply being factual. Let the SIT's report come out in public domain. Was it sheer incompetence on the part of Champat Rai? Or was he involved in a larger conspiracy? Or was it neither incompetence nor any role in the larger conspiracy, but he was himself a victim of what transpired around him? Let's wait for the brass tacks to be out before guillotining somebody on national TV.